मीडियम वेव 205.6 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत कल्याण कार्यक्रम में वार्ता का विषय है अमरूद के बाग के देखभाल। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख फलों में अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। यह दूसरे फल वृक्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अपनी लोकप्रियता और अनुकूलता के कारण इसकी बागवानी पूरे भारत में की जाती है। अमरूद के पौधों में सुंदर एवं मजबूत ढांचा देने के लिए 2 से 3 वर्ष तक कटाई छटाई की जाती है। ढांचा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर तक मुख्य तने पर कोई शाखा न हो। इसी ऊंचाई पर मुख्य तने से 3-4 शाखाओं को चारों तरफ समान रूप से निकलने देना चाहिए। तदुपरांत पौधे के आकार को नियमित रखने एवं अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर आवश्यक काट छाट करते रहना चाहिए। कटाई छटाई मार्च से जून तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। अमरूद के छोटे पौधों को नियमित रूप से सिंचाई देते रहना चाहिए जिससे पेड़ की जड़ क्षेत्र नम बना रहे। सर्दियों में 20 से 25 दिन तथा गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर थाला विधाई विधि से सिंचाई करते रहने से पौधों का विकास अच्छा होता है। सिंचाई के बाद समय समय पर गुड़ाई एवं घास निकालते रहना चाहिए। फल लगने वाले पौधों में फूल के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें। ऐसा करने से फूल गिर जाएगा एवं फल कम लगेंगे। खरपतवार निकालते समय गुड़ाई कम करना चाहिए क्योंकि अमरूद की जड़ें ऊपरी सतह पर ही होती हैं। प्रारंभ के 2-3 वर्षों में बाग के रिक्त जगहों पर कुछ सब्जी वाली फसलें जैसे मटर, गोभी, ग्वार, लोबिया आदि उगाई जा सकती है। जब फल मिलने आरंभ हो जाए तो अंतःसस्यन नहीं करना चाहिए। नए बागों में रबी में गोभी, मटर, फ्रेंच बीन और मेथी, खरीफ में लोबिया, ग्वार, उर्द और मूंग तथा जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती हो और भूमि क्षरण यानी कि कटाव की समस्या हो वहां बरसात में भूर संरक्षी फसलें जैसे लोबिया, ग्वार, सनई, ढैंचा आदि को बाग के खाली जगहों में लगाना चाहिए। अंतःसस्यन करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतः फसलें कम बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल लगाते समय कम से कम 1 मीटर जमीन पेड़ के चारों तरफ छोड़ देनी चाहिए। इन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता मुख्य फसल जैसी होनी चाहिए। ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए जो भूमि से बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हों। गन्ना, अरहर, मक्का, ज्वार आदि फसलें बाग में नहीं लगानी चाहिए। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा को 2 भागों में बांटकर पहला भाग जून जुलाई में और बाकी बचा पोषक तत्व अक्टूबर माह में देना चाहिए। जून जुलाई में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा तने से 1 मीटर दूरी पर पौधों के छत्रक के नीचे गोलाई में 15 सेंटीमीटर गहरी नाली में देकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। यूरिया की बची आधी मात्रा को अक्टूबर में पेड़ों के नजदीक आप दें। यदि वर्षा न हो रही हो तो खाद के बाद पानी देना आवश्यक होता है जिससे नमी बनी रहे। अमरूद के पेड़ों में 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 260 ग्राम यूरिया, 375 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना चाहिए। इतनी ही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ 50 वर्षों तक बढ़ाते रहना चाहिए। 5 वर्षों के बाद प्रति वर्ष 5वें वर्ष में जितना खाद एवं उर्वरक दिया गया हो उतना ही देना चाहिए। कुछ इलाके में अमरूद के पौधों में जस्ते की कमी पाई गई है। इसकी कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और बढ़वार भी रुक जाती है। टहनियां सूखने लगती हैं, फूल भी कम लगते हैं और लगे हुए फल फटकर सूख जाते हैं। जस्ते की कमी के पूर्ति के लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष थाले में देकर पूरी की जा सकती है। जिंक सल्फेट को भूमि में मिलाने के पूर्व सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। इससे जस्ते की उपलब्धता बढ़ जाती है। अमरूद के पेड़ से 1 वर्ष में 3 फसलें ली जा सकती हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर एक ही फसल लेने का सुझाव दिया जाता है। फसल तोड़ने के अनुसार उसे बरसात, जाड़ा और बसंत में विभाजित करें। इस तरह से अमरूद के बाग की देखभाल करें और लाभ उठाएं।
0: खेत कल्याण कार्यक्रम में आपने जाना अमरूद के बाग की देखभाल। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। आइए अब सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
2: लीजिए अब सुनिए पहले

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।

0: किसी गांव में एक बहुत ही फूहड़ किस्म का आदमी रहता था। गांव में कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन एक संत उस गांव में आए। उस व्यक्ति ने संत से प्रार्थना की कि महाराज, गांव में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। संत ने विचार कर कहा कि आज से तुम चुप रहना सीखो और आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ बोलो। उसने संत की बात मान ली और उस दिन से चुप रहने लगा। केवल चुप रहने से ही गांव के लोग उसे समझदार मानने लगे। इसलिए हमारे मनीषी कहा करते हैं कि
1: अकारण
0: बोलकर दुख आमंत्रित मत करो। सच है कि वाणी की साधना है मौन। बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम अपने विचारों को मस्तिष्क के उचित अनुचित की तराजू पर तौलकर उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करते हैं, तभी हमारे भावों की सार्थक अभिव्यक्ति होती है। सच कहें तो वाणी हमारे विचारों, संस्कारों और चरित्र का अभिलेख है। एक बार जब किसी व्यक्ति को हमारी बातों से चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत हम नहीं कर सकते। यह सही है कि शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उसके चयन पर निर्भर करता है कि कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। लफ्ज ही होती है इंसान का आईना। शक्ल का क्या, वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है। विनम्र स्वभाव और मीठी वाणी का हर तरह से सफलता में योगदान रहता है। इसलिए हमें हमेशा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कटु बोलना, झूठ बोलना, असंगत बात कहना, अहंकार युक्त शब्द बोलना आदि वाणी के ऐसे दोष हैं जिनसे मनुष्य पग पग पर संकट में पड़ता है। विदुर नीति में कहा गया है कि असंयम पूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहना श्रेयस्कर है। अहम छोड़कर मधुरता से सुवचन बोले जाए तो जीवन का सच्चा सुख मिलता है। वाणी परमात्मा की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है। शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, जिसका कभी नाश नहीं होता। मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति प्रायः निर्भय, प्रफुल्लित एवं आनंदित पाए जाते हैं। इसलिए हम हमेशा याद रखें, तुलसी मीठे वचन तैं सुख उपजय चहु ओर, वशीकरण के मंत्र हैं तज दे वचन कठोर।
2: आप सुन रहे थे चिंतन मनन। आलेख था अरुण कुमार झा का, वाचक सरशा रहमत। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब आनंद ले भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

कहते हैं कि भगवान भगत के वश में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भक्त भगवान पर अधिकार जमा लेता है, बल्कि इसका भाव ये है कि भगवान अपने सच्चे भक्त के प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे स्वयं उनके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। बालक ध्रुव की तपस्या, प्रहलाद की अटूट भक्ति, शबरी की प्रतीक्षा और मीरा का प्रेम, इन सब ने भगवान को अपने भक्तों के पास आने के लिए विवश कर दिया। भगवान को धन, वैभव या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और निष्कलंक भक्ति। इसलिए कहा जाता है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां सच्ची भक्ति है वहां भगवान स्वयं अपने भक्त के वश में हो जाते हैं।

भगत के वश में है भगवान, बस सच्चे मन से मांगो दान। जब मन भक्ति में डूब जाता है तो हर सांस में प्रभु का नाम बस जाता है। हे राम, हमारे राम

राम सीताराम। प्रभु श्री राम के साथ राधे श्याम और सीताराम के नामों का सुंदर स्मरण किया जाता है। तो कहते हैं कि मन तो प्रफुल्लित होता ही है, ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जब हम उनका भजन गाते हैं, तो उनका भजन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा सुख है। आइए प्रभु श्री राम की भक्ति में मन को समर्पित करते हुए सुने ये भजन। कहते हैं कि राम और कृष्ण अलग नहीं हैं, राम के ही अवतार कृष्ण हैं।

काल का पहिया जब घूमता है तब राजा रंग हो जाता है और रंग राजा। कहते हैं कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है, और काल हमारे कर्मों को कभी नहीं भूलता। हमने किसी का दिल दुखाया हो, वो व्यक्ति, वो प्राणी, वो जीव जरूर भूल जाएगा, लेकिन काल नहीं भूलता। काल हमारे हर कर्म की का लेखा जोखा रखता है, और वक्त आने पर जब उसका पहिया घूमता है तो वो हमें उसका फल भी देता है। इसलिए कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों को भी प्रेम देना चाहिए, दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनकर जीवन बिताता है, उसका नाम और उसके अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दुख बांटता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसे समाज का प्रेम और सम्मान मिलता है। ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने ऐसा काम किया था, वैसा काम किया था, अच्छे काम किए थे उन्होंने, और मृत्यु के बाद भी लोग उनकी बात करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर मौत के बाद भी सम्मान पाना है तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वार्ता आंखों की देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह।
1: मनुष्य की आंखें प्रकृति की एक अनमोल एवं अद्भुत रचना है। जन और सिर्फ मनुष्य की सुंदरता में चार चांद लगाता है, बल्कि मनुष्य इसी के माध्यम से प्रकृति की अन्य रचनाओं को देख पाता है, उसके भव्य स्वरूप को पहचान पाता है। इस भौतिक संसार को जानने, समझने और बूझने में हम जो ज्ञानेंद्रियों काम में लाते हैं, उसमें आँखें सबसे ज़्यादा काम की है, क्योंकि समझा जाता है कि 70-80% ज्ञान आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि इतनी सुंदर एवं इतनी उपयोगी रचना की देखभाल हम अच्छी तरह करें। आंखें हमारे स्वस्थ रहे, इसमें किसी प्रकार का संक्रमण न हो, इसके लिए जरूरी है कि आंखों की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें। इसके लिए जरूरी है कि प्रतिदिन शाम को अपनी आंखों को साफ पानी से आंखों को अच्छी तरह धो लें, ताकि दिन भर में आंखों में जमी धूल कण या अन्य गंदगियाँ बाहर आ जाए। इसी प्रकार आंखों को सुबह जगने के पश्चात पुनः साफ पानी से धो लेनी चाहिए, ताकि रात भर में जमी कीचड़ या अन्य कचरा बाहर आ जाए। आंखों को पानी से धोने के बाद इसे साफ तौलिया या रुमाल से पोछनी चाहिए। अक्सर लोग आलसवश आंख साफ करने में पश्चात कुर्ता एवं आंचल के पल्लू से आंख पोछ लेते हैं, यह हानिकारक हो सकता है। पुराने समय से ही आंखों को सुंदर एवं मनमोहक बनाने के लिए लोग सुरमा एवं काजल का प्रयोग करते रहे हैं। इसके पीछे लोगों का मानना है कि इससे आँखें न सिर्फ सुंदर दिखती है, बल्कि इससे आँखों की रोशनी भी तेज होती है। साथ ही साथ सुरमा एवं काजल अपने साथ आँखों को गंदगी को भी बाहर ले जाती है। इस संबंध में ध्यान रखनी चाहिए, ये सुरमा एवं काजल अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, नहीं तो यह आँखों पर बुरा असर भी डाल सकता है। लिहाजा इसका प्रयोग ना ही करने में भलाई है। पढ़ने के शौक रखने वाले के लिए तो आँखें ही जहान है। इसको सेहतमंद रखने के लिए कुछ सरल नियम अपनानी जरूरी है। पढ़ाई के लिए रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे तो सूर्य की रोशनी सबसे अच्छी होती है, परंतु इसकी उपलब्धता हर समय संभव नहीं हो पाता है, लिहाजा ट्यूब लाइट या बल्ब की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए कम से कम 100 वाट का बल्ब का प्रयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि रोशनी पीछे बाईं तरफ से आए, ताकि पढ़ाई या लिखाई में किसी तरह की छाया नहीं पड़े, खासकर जो व्यक्ति दाएं हाथ से लिखाई करते हैं। इसके अलावा ध्यान देनी चाहिए कि पढ़ाई बैठ कर करें। अक्सर लोग लेटे लेटे पढ़ना चाहते हैं। ऐसा करने में कमर में तो आराम जरूर पहुंचता है, लेकिन गर्दन की मांसपेशियां थक जाती हैं और आँखों की मांसपेशियां पर भी लोड पड़ता है, इसमें भी थकावट आ जाती है। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि लगातार आधा घंटा तक पढ़ाई करने पर 2-3 मिनट तक आँखों को आराम का मौका भी देना चाहिए। इसके लिए 2-3 मिनट के लिए आँखों को ध्यान किताब से हटाकर दूर देखनी चाहिए या हथेली आँखों पर रख कर थोड़ा सहलाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आँखें शरीर का बेहद नाजुक अंग है, लिहाजा हमें सावधान रहना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने सुना वार्ता आंखों की देखभाल। वार्ताकार थे डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आनंद ले रामचरित मानस गान का। रामचरित मानस गान प्रस्तुत है शोभा जोशी के स्वर में। दोहा और चौपाई है आरंभ का। गीतराज से भेंट की गई। आइए सुने रामचरित मानस गान को।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

रामचरितमानस गाना आप सुन रहे थे शोभा जोशी के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

रोजाना की तरह प्रातः 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान पाएंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां और आनंद लीजिए सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का। साथ ही आप सुन पाएंगे गांधी कथा में वार्ता गांधी और बा। आज फिल्मी गीतों का प्रसारण समय है प्रातः 9:06, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर, 2:30 पर, शाम 5:30, रात 8 बजे और रात 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम पसंद आपकी होगा। सुगम संगीत प्रस्तुत होगा प्रातः 9:30 पर कलाकार ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी और रात 7:52 पर कलाकार अनिल कुमार आनंद। लोकगीतों का आनंद लीजिए प्रातः 10:30 पर कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। 1 बजे तेज नारायण चौधरी एवं साथी के स्वर में लोकगीत होगा। बहनें अपना कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं दोपहर के 12 बजे। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग घर आंगन कार्यक्रम होगा 1:30 पर। श्रोताओं मीडियम वेव पर हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी दोपहर 3 बजे। FM बैंड 100.1 MHz एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे से हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे मीडियम वेव एवं FM 100.1 MHz पर। शाम 5 बजे युवाओं का विशेष कार्यक्रम युववाणी, ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम के 6 बजे।

शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा स्वस्थ जीवन के लिए योग। वार्ताकार योगाचार्य उमाकांत चौधरी। सुनना न भूले रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल रात 9:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं कहानी, कविता, वार्ता एवं

अन्य बातें प्रस्तुत होगा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम रात के 10 बजे, कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एवं पाटी। श्रोताओं, हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात के 11:10 पर।

आपने जाना आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय सारणी। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं, सुनिए दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार।

0: आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन यूयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानंदः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वीप 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 7 बज चुके हैं, आइए आनंद ले मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा और साथ ही आपको बहुत सी बातें इस कार्यक्रम से जानने को, सीखने को मिलेगी। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपने अपने दिन की शुरुआत कर ली होगी, क्योंकि समय का हाल हो चुका है 7:02 हो चुके हैं पूरे और दिन है आज शुक्रवार का, 12 तारीख है। जी हाँ, जून का महीना है, 12 तारीख है और जून के महीने में दिन की शुरुआत काफ़ी पहले हो जाती है। तो आपने भी अपने दिन की शुरुआत कर ली होगी क्योंकि चांद और सूरज में अदला बदली हो चुकी है, तारे बिल्कुल छिप चुके हैं और सूरज ने अपनी रोशनी बिखेर दी है और सुबह हमें ये संदेश दे रही है कि आलस अब हमें त्याग देना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। हम क्योंकि रात बिल्कुल बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है और ये जो पनघट है वहाँ से तारे गायब हो चुके हैं, तो आप भी आलस को गायब कर दीजिए, छूमंतर कर दीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और वादा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से सुगम संगीत के साथ। सुगम संगीत आप सुनेंगे प्रिया कुमारी के स्वर में और इस गीत को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। आइए सुनते हैं इस गीत को। गीत के उस पार बहुत सी बातें, बहुत सारे गपशप और बहुत सी जानकारियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। फिलहाल तो ये जो रात है, विभावरी है, वो बीत चुकी है, आप जल्दी से जाग जाइए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक बहुत ही प्यारे से सुगम संगीत और एक छोटे से अंतराल के इस बार हम हैं आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे मौसम का हाल, और अभी मौसम का हाल जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बारिश भी उतनी ही तेज़ी से बरसती है, आंधी भी उतनी ही तेज़ी से आती है और धूप भी उतनी ही चमकदार खिलती है। तो आइए जानते हैं कि आज क्या होने वाला है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। अगर मौसम के हाल के बारे में बताएं तो आज अधिकतम तापमान दिन में होने वाला है 29.5 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान यानी कि रात में 25.7 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और आसमान में अच्छी धूप खिलने की संभावना है। हालांकि कुछ कुछ समय पर हल्के या ज़्यादा बादल नज़र आएंगे, लेकिन वर्षा होने की संभावना काफ़ी कम है। और अगर हम बात करें सापेक्ष आर्द्रता की, तो सापेक्ष आर्द्रता 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। और अनुमान है कि इस दौरान 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। तो ये है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। और मौसम अभी हमारे जीवन में ऐसे ही ब्रेक लगा देता है। आप के घर जाने का समय है या फिर बाहर, घर से बाहर जाने का समय है, अचानक मौसम इस तरीके से 5 मिनट में बदलता है कि सारी की सारी प्लानिंग बर्बाद कर देता है। फिलहाल आज उम्मीद है कि आज आपकी कोई भी प्लानिंग बर्बाद नहीं होगी, अच्छी जाएगी सारी की सारी प्लानिंग। लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार यानी कि अंतराल के उस पार हम यहीं होंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा।
3: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.

आज बादलों के आपके बोलने की संभावना तो कम है, आज बादल शायद आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई आपका अपना आपसे काफ़ी कुछ कहने को बोलने को आ रहा हो, और अगर वो ट्रेन से आ रहा है या फिर कहीं आप अपने किसी अपने के पास जा रहे हैं ट्रेन से, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनों का हाल जान लें, कौन सी ट्रेन सही समय से चल रही है और कौन सी ट्रेन लेट लतीफ़ है। ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय यानी कि 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस सुबह 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से चलते हुए 9:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल 16 मिनट की देरी से चल रही है, 8:21 पर भागलपुर आएगी। 53416 यानी कि साहिब जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर 8:37 पर भागलपुर आएगी। 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 8:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 9:00 भागलपुर पहुँच जाएगी। 6341 साहिबगंज जमालपुर मेमू 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी बिल्कुल सही समय से चल रही है, 10:15 इसका सही समय है। 12367 भागलपुर आनंद बिहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर यानी कि 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गांधी कथा में वार्ता, गांधी और बा। वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्रभूषण प्रसाद सिंह। आइए सुने इस वार्ता को। वार्ता के उस पार बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारियाँ और बहुत सा मनोरंजन आपका इंतजार कर रहा है।

0: श्रोताओं नमस्कार। गांधी कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व में उपलब्ध संसाधन मानव की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लोभ के लिए नहीं। ब्रिटेन में हुए औद्योगिक क्रांति के बाद मानव को ये एहसास होने लगा कि विकास का एक ही मापदंड है, आप कितने प्रौद्योगिक हैं। वर्तमान समय औद्योगिक क्रांति से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के युग में प्रवेश कर चुका है। हमारा स्मार्टफोन इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा उदाहरण है। महात्मा गांधी ने प्रौद्योगिकी को मानव विकास के लिए जरूरी माना, लेकिन कम से कम प्रयोग करके। आज की इस गांधी कथा में हमारी वार्ता का विषय है गांधी और प्रौद्योगिकी। वार्ताकार हैं डॉक्टर पुण्यन्दु शेखर।
1: औद्योगिक क्रांति के बाद कुछ साम्राज्यवादी ताकतों ने दुनिया भर में यह झूठ प्रचारित कर दिया कि सामाजिक प्रगति का एकमात्र पैमाना भौतिक समृद्धि एवं तकनीकी विकास है, लेकिन गांधी की दृष्टि इससे भिन्न थी। गांधी मानते थे कि प्रौद्योगिकी अथवा तकनीक का समाज से सीधा संबंध है, इसलिए समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता

0: है उसी से प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए। इस तरह आवश्यकता को केंद्र में रखकर प्रौद्योगिकी का यथासंभव कम से कम प्रयोग गांधी को उचित लगा, लेकिन विलासिता केंद्रित साम्राज्यवादी विस्तार, पूंजीवादी एवं शोषण को विस्तार देने वाली तकनीक उन्हें कदाचित उचित नहीं लगा। विकास एवं तकनीक भौतिक समृद्धि उन्मुख न होकर नैतिक समृद्धि उन्मुख होना चाहिए। उनका मानना था कि प्रौद्योगिकी को अपना आराध्य मानने वाली आधुनिक सभ्यता अनीति पोषक है। लोग बाहरी खोजों एवं शारीरिक सुखों में धन्यता एवं सार्थकता महसूस करते हैं। इसमें भौतिक विकास को ही चरम पुरुषार्थ माना जा रहा है। वास्तव में यह एक बुरी सभ्यता का प्रतीक बन गया है। इसकी वजह से लोगों के नैतिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई है। आधुनिक सभ्यता का यंत्रवाद दुनिया भर में भोगवाद एवं अनिति को बढ़ावा दे रहा है, जो गांधी दृष्टि से सर्वथा अनुचित एवं अवांछनीय है। उनके लिए प्रौद्योगिकी का प्रश्न सभ्यता संस्कृति मूलक प्रश्न है। गांधी ने हिंद स्वराज में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता एवं प्रौद्योगिकी की जमकर आलोचना की है। प्रश्न उठता है कि क्या गांधी सभी तरह के यंत्रों के विरोधी हैं? वस्तुतः उनका विरोध यंत्रों के लिए नहीं है, बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है उसके लिए है। समय एवं श्रम की बचत गांधी भी चाहते थे, लेकिन उनकी अपेक्षा किसी विशेष वर्ग को लाभान्वित होते रहने की नहीं, बल्कि इसके लाभ को समस्त मानव जाति तक पहुंचाने की थी। कुछ विशेष वर्ग को तकनीक से होने वाले धन लाभ पर भी गांधी को ऐतराज था। उन्होंने स्पष्ट कहा, यंत्रों के उपयोग के पीछे जो प्रेरक कारण है वह श्रम की बचत नहीं बल्कि धन का लोभ है। आदमी को जड़ और बेकार बनाने वाली प्रौद्योगिकी को वे तजने की बात करते हैं। ऐसे यंत्र नहीं होना चाहिए जो काम न रहने के कारण आदमी के अंगों को जड़ और बेकार बना दें। इस तरह वे यंत्र के अंधानुकरण, संपूर्ण उपयोग एवं नकल पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हैं। लेकिन आज प्रौद्योगिकी के विकास एवं उस पर आधारित जीवन को लेकर चिंता और गहराई है। विनोद खोसला ने एक लेख में लिखा था, उसमें उन्होंने मनुष्य और उसकी सृजनात्मकता के समक्ष आने वाली गंभीर चुनौतियों को विस्तार से प्रकाश डाला। उनके आलेख का विचार सूत्र था, खुद की बनाई मशीनों से हार जाएगा मनुष्य और हमसे आगे निकल जाएगा मशीनी दिमाग। उनके अनुसार जिस एक चीज पर मनुष्य के ऊपर सबसे अधिक असर पड़ेगा वह है ऐसी प्रणालियों का निर्माण जिसमें प्रशिक्षित मनुष्य के विचार करने की शक्ति से कहीं ज्यादा गहराई से विचार करने की व निर्णय लेने की क्षमता होगी। उसमें सबसे प्रशिक्षित मानव से भी उच्चतर निर्णय निर्माण प्रक्रिया होगी। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिक तेजी से ढेर सारे आंकड़ों तक पहुंच सकेगी और अधिक तेजी से निर्णय ले पाएगी, जबकि मानव इतनी तेजी से निर्णय नहीं ले पाएगा। इतना ही नहीं, मानव मस्तिष्क हर स्थिति के लिए प्रशिक्षित नहीं होता है और कृत्रिम बुद्धि को मानवीय दिमाग की तरह नकल की भी जरूरत नहीं होती है। जाहिर है कि मशीन मनुष्य को इस दक्षता में मात दे देगी। ऐसे में इंसानी श्रम एवं फैसलों की कीमत या मूल्य कम हो जाएगी। मशीन ने जब मनुष्य के शरीर श्रम को परास्त किया था तो मानव अपनी बुद्धि पर इतरा रहा था, लेकिन जब मशीन ने मानव बुद्धि को पछाड़ने की क्षमता विकसित कर लिया, मानव की उपेक्षा से इनकार कर पाना मुश्किल है। ऐसे में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में मानव की किस तरह की भूमिका बची रह जाएगी, यह चिंता गंभीर है। खोसला यह भी ध्यान दिलाते हैं कि मानवीय श्रम और मानवीय निर्णय की जरूरत कम होने के साथ साथ पूंजी की तुलना में इसके महत्व और मूल्य में कमी आएगी। दूसरी तरफ तकनीक की विस्तारित एवं तीव्रगामी उत्पादन क्षमता एवं मानव श्रम की कार्यकुशलता एवं निर्णय की महत्ता में कमी आने से जिस पूंजीवाद की लहर चलने वाली है, इसके अनचाहे प्रभावों पर प्राथमिकता के साथ गौर करने की बात खोसला स्वीकार करते हैं। विश्वविख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि पूरी तरह से विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के विनाश की कथा लिख सकती है। वे कहते हैं, एक दिन AI अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और खुद को फिर से तैयार करेगा, जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। चूंकि जैविक रूप से इंसान का विकास धीमा होता है, लिहाजा वह ऐसे सिस्टम से प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा और पिछड़ जाएगा। उन्होंने हाल में एक साक्षात्कार में कहा था कि AI तकनीक एक दिन मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है।
1: आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं गांधी का ये प्रिय

0: वस्तुतः तकनीक या प्रौद्योगिकी को लेकर दो दृष्टि रही है। पहली दृष्टि तकनीकी आशावादी दृष्टि है और दूसरी दृष्टि तकनीकी निराशावादी दृष्टि है। जब शारीरिक क्षमताओं में मशीन ने पछाड़ा था तो हमारे पास गौरवान्वित होने के लिए बुद्धि थी, लेकिन जब आज कृत्रिम बुद्धि ने हमारी बुद्धि को पीछे छोड़ देने के दौर में प्रवेश कर लिया है तो हम इस चिंता से मुंह फेर कर कब तक बैठे रहेंगे। गांधी 1909 में हिंद स्वराज में अपनी सशक्त आपत्ति तकनीक के विरुद्ध स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा था, यंत्र तो सांप का एक ऐसा बिल है जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों सांप रहते हैं, एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। पुनः वे कहते हैं, यंत्र मरते मरते यह कह जाता है कि मुझसे आप बचिए, होशियार रहिए। मानव सभ्यता के विनाश का दर्द गांधी और हॉकिंस के हृदय वीणा को बहुत कुछ समान ढंग से झंकृत करता दिखता। गांधी को उदार तकनीक आशावादी नहीं कहा जा सकता है। तकनीक का व्यापक हस्तक्षेप मानव के शरीर एवं बुद्धि श्रम को किस तरह पदच्युत कर देगा, यह चिंता खोसला एवं गांधी में स्पष्ट दिखती है। लेकिन गांधी उस दौर में इसका विरोध करते हैं जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं आई थी, लेकिन खोसला और हॉकिंस में यह चिंता तब पनपती है जब तकनीकी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर आता है। गांधी उस समय चिंता करते हैं जब वह मानव को बेकार, बेरोजगार एवं अक्षम घोषित करना शुरू किया था। शरीर श्रम की पदच्युति एक पैराडाइम शिफ्ट था और बुद्धि श्रम की पदच्युति भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। यंत्र की क्षमता, व्यापकता, तीव्रता, तीक्ष्णता, त्रुटि रहितता आदि ने कम उत्पादन वाले, कम दक्षता, धीमे और त्रुटि युक्त उत्पादन क्षमता वाले मनुष्य को पदच्युत कर दिया। मानव की पदच्युतता की स्थिति दोनों ही युगों में समान रूप से परिलक्षित हुई, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर अवश्य आ गया। जब मशीन मानव की जगह पर स्वयं नियंत्रणकर्ता की भूमिका में बैठ जाएगा, यह स्थिति और भयावह होगी। जब कार ड्राइवर, सफाई कर्मी, रेल की व्यवस्था कर्मी को रोबोट हटा देगा तो मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा। खोसला का मानना है कि मशीनी ज्ञान की क्रांति आय में असमानता को बढ़ाएगी और यह असमानता एक बिंदु के बाद सामाजिक तनाव पैदा करेगी। कल्पना कीजिए, जब हर क्षेत्र में मशीनों की घुसपैठ हो जाएगी तो सारा मानवीय श्रम, ऊर्जा, इच्छा, लक्ष्य, सृजनात्मक कार्यों से हटकर गलत एवं मूल्य रहित भोग में तब्दील हो जाएंगी। कल्पना कीजिए, जब सभी सृजनात्मक कार्यों को सफल रूप में मशीन अंजाम देंगे तो मानव के द्वारा स्थापित मूल्य की क्या दुर्दशा होगी। अभी मशीन मूल्य की कल्पना करना संभव नहीं है, लेकिन स्थिति भयावह होगी यह समझा जा सकता है। गांधी ने आवश्यकता से इतर प्रौद्योगिकी के साम्राज्यवादी विस्तार एवं पूंजीवादी गतिविधियों को प्रश्रयता पर ध्यान उसी समय दिलाया था। किस तरह प्रौद्योगिकी मानव श्रम, स्वास्थ्य आदि के लिए खतरा है और शोषण के लिए साधन बन सकती है, इसका ध्यान उसी समय दिलाया था। बगैर शरीर श्रम एवं बुद्धि श्रम की भागीदारी के मानव की प्रवृत्ति किस तरह की हो जाएगी, यह विचारणीय प्रश्न है। खोसला अंततः तकनीकी आशावादी ही रह जाते हैं, क्योंकि वे मशीन ज्ञान की तीव्रता बढ़ाने और उसके उपयोग के पक्ष में हो जाते हैं। लेकिन गांधी की कसौटी भिन्न है। गांधी को खोसला की तरह आय का संतुलन भी सताता है, किंतु मशीन से बेकार मानव की चिंता गंभीर है। गांधी मानव को पदच्युत करने वाले कृत्रिम एवं विकराल मशीनी उपयोग की जगह मशीन को तज कर मानव के श्रमपूर्ण जीवन की स्थापना कर मानव सभ्यता एवं मानवीय मूल्यों को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, ना कि तकनीकी सभ्यता की स्थापना चाहते हैं। मशीन निर्धारक, निर्देशक हो और मानव निर्धारित एवं निर्देशित, मानव की ऐसी अधोगति से गांधी को ऐतराज है। गांधी मशीन को उपकरणात्मक यानी इंस्ट्रूमेंटल सीमित भूमिका तक ही मशीन स्वीकारी है। मशीन या तकनीक नियंता की भूमिका में हो या उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मानव जीव शास्त्री प्राणी है, मशीन के दुरुपयोग एवं निर्भरता से उसका तीव्र एवं घातक क्षय संभव है, इसलिए मशीन के उपयोग की हद बांधी जानी वांछनीय है। गांधी भी इसी तरह मशीन के उपभोग की सीमा तय करना एवं हद बांधना चाहते हैं। मानवीय श्रम, गरिमा, स्वास्थ्य, मूल्य आदि की उपेक्षा करने वाले एवं साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, हिंसा आदि की नियति तक ले जाने वाले मशीनीकरण, विकास, सभ्यता आदि पर उनका कड़ा ऐतराज है।
1: आज के इस वार्ता को सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि महात्मा गांधी का विरोध यंत्रों के लिए नहीं है, बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है उसके लिए है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भी जरूरत इसी बात की है कि उनका उपयोग वहीं तक सीमित हो जहां तक वे जरूरी हैं। अन्यथा सब कुछ तो रहेगा पर जिनके लिए ये सब हो रहा है वही नहीं रहेंगे। आज की इस गांधी कथा में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ। धन्यवाद।
2: गांधी कथा में आप सुन रहे थे वार्ता। गांधी कथा में वार्ता का शीर्षक था गांधी और उनकी यंत्रों के प्रति सोच। वार्ताकार थे डॉक्टर पूर्णेंदु शेखर। और आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और हमारा कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में बातें अभी बहुत सारी होने वाली है और बहुत सारे गपशप भी होने वाले हैं। फिलहाल हम आज के इतिहास के बारे में जानते हैं, लेकिन आज के इतिहास के बारे में जानने से पहले वर्तमान की थोड़ी सी झलकी मैं आपको दे देती हूँ। वर्तमान के समय का हाल मैं आपको बता दूँ तो 7:32 हो चुके हैं और 7:33 बस होने ही वाले हैं। दिन है आज शुक्रवार का और तारीख की बात करें तो तारीख है 12 जून 2026। और 12 जून को क्या कुछ विशेष घटित हुआ था आज के इतिहास में जानते हैं। आइए, आज ही के दिन 1987 में ब्रिटिश चुनावों में मार्गरेट थैचर की तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हुई थी। और बात करें 1998 की तो 1998 में भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 देशों से ऋण नहीं देने का निर्णय लिया गया था। 1999 में ईस्ट तिमोर के लिए मिशन हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृति मिली थी। और आज ही के दिन साल 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी। 2004 में सवर्ना यानी कि जॉर्जिया में समूह 8 सम्मेलन संपन्न हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग द्वितीय के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। 2007 में कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों का चयन हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाजत आज ही के दिन मिली थी 2007 में। 2008 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वें ओसियाना सीनेफैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था। साल 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। और 12 जून के बारे में अगर हम बात करें, अब बात तो उन व्यक्तियों की जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज ही के दिन साल 2017 में सी नारायण रेड्डी का निधन हुआ। सी नारायण रेड्डी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। 1989 में नीलोफर का निधन हो गया था। नीलोफर एक राजकुमारी थी, तुर्की के ओटोमन राज सी वंश की आखिरी

शहजादी थी। 1986 में अमियाई चक्रवर्ती का निधन हुआ। अमियाई चक्रवर्ती बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। भारत के भूतपूर्व सातवें मुख्य न्यायाधीश पीवी गजेंद्र गडकर भी आज ही के दिन 1981 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। गोपीनाथ कविराज संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक, इनका निधन 1976 में हुआ था। 1972 में श्री डी जी तेंदुलकर का निधन हुआ। श्री डी जी तेंदुलकर महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक थे। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार थे। साथ ही फिल्म निर्देशक और संगीतकार, साथ ही गायक भी थे। इतनी प्रतिभा के धनी इस दुनिया को अलविदा कह गए साल 2000 में। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन है जन्मदिन। 1957 में जन्म हुआ गीतांजलि श्री का। गीतांजलि श्री हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं और हाल ही के कुछ वर्षों में उन्हें काफ़ी बड़ी उपलब्धियां मिली और उनकी किताब रेत समाधि के लिए उन्हें बुकर्स प्राइज से भी सम्मानित किया गया, जैसे कि जिस रेत की समाधि के अंग्रेजी ट्रांसलेशन वाले बुक को टॉम ऑफ सेंड को बुकर्स प्राइज मिला था। और इनकी कुछ और भी किताबें हैं जैसे आवर सिटी डैट ईयर नॉवेल है, फिर अरूफ बिनिट है, हमारा शहर उस वर्ष, ऐसी कुछ किताबें हैं, खाली जगह है, माई है, तो इनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। और 1949 में जन्म हुआ था सूरजबाई खांडे का। सूरजबाई खांडे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भारतीय गायिका थी। और 1935 में जन्म हुआ श्यामा का। श्यामा भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी। 1932 में ई श्रीधरन का जन्म हुआ था। ई श्रीधरन भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं। कोंकण रेलवे और दिल्ली के मेट्रो रेलवे का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1932 में पद्मिनी का जन्म हुआ। पद्मिनी हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। हिंदी में इन्होंने कुछ फिल्में की जैसे कि मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है जैसे फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। जयश्री तलपड़े का जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था। जयश्री तलपड़े मराठी अभिनेत्री थी। इन्होंने शर्मिली जैसी फिल्मों में काम किया था। 1915 में जन्म हुआ था सी के नागराज राव का। श्री सी के नागराज राव कन्नड़ लेखक, नाटककार, मंच कलाकार, निर्देशक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये बात हो गई आज के इतिहास की। और अभी हमने जाना कि आज ही के दिन जन्म हुआ था पद्मिनी का, जिन्होंने मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है जैसे फिल्मों में काम किया। मेरा नाम जोकर बहुत ही कमाल की फिल्म। आइए इसी फिल्म का एक गाना सुनते हैं और गाने के उस पार मिलते हैं।

0: दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: सर, 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
6: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
8: बहुत ही प्यारे से गीत और एक छोटे से थोड़े से बड़े अंतराल के इस बार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इतिहास के पन्नों को पलट लिया है, अब जानते हैं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियाँ क्या कहती है। समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है, समुद्र में संकट, ओमान तट पर 2 माह से अमेरिकी नाकेबंदी में पहली बार कार्रवाई में मौत। शिप पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत। भारत ने अमेरिका के राज नाइक से कहा, जहाजों पर हमला रोकें। MLC चुनाव में निशांत और गायक अभिनेता पवन वे निर्वाचित, सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, इनमें NDA के 9 और राजद का 1। ईरान पर जोरदार हमले की धमकी देकर 5 घंटे में पलटे ट्रंप, कहा डील तय है। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत के लिए बिहार ने रखा रोड मैप, सम्राट ने केंद्र से मांगे 20,250 करोड़ और कई बड़े प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने PM की मौजूदगी में बिहार सरकार के खास काम बताएं। CBSE पोर्टल में खामी ढूंढने वाले छात्र को बिना ग्रेजुएशन के IIT में जॉब ऑफर मिला। मॉनसून ने दी दस्तक, कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में 8 झुल से आसमान से बरसी आफत। नियमित रूप से मुख्यालय को भेजनी होगी जांच रिपोर्ट, 24 घंटे सेतु की निगरानी करेंगे इंजीनियर। पुणे में CJP का देशव्यापी आंदोलन शुरू, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। SRS रिपोर्ट 2026 में खुलासा, गांवों में स्थिति और डरावनी, बिहार में इलाज के अभाव और गलत उपचार से 77.8% मौतें, 100 में से 68 लोग समय पर केयर ना मिलने से तोड़ रहे हैं। मायागंज अस्पताल में कतार में बांटा जा रहा खाना, व्यवस्था के अनुसार मरीज तक पहुंचनी चाहिए थाली, कागजों में बेड पर भोजन, लाइन में परिजन। DDC की जांच में सुल्तानगंज की 80 याचक पंचायत में फर्जीवाड़ा का खुलासा, आवास सहायक बर्खास्त। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 व 2026-27 में अप्रैल मई में 2 बाल श्रमिक हुए मुक्त, नियोजकों पर लगा जुर्माना, केस दर्ज। पढ़ने की उम्र में कर रहे थे काम, जिले में 14 माह में 14 बच्चे बाल श्रम मुक्त हुए। बाल श्रम से मुक्ति के बाद मिलती है पुनर्वास की सुविधा। भागलपुर और बांका के पुलिस कर्मियों में होगा फेरबदल। जिले में 5 वर्ष से तैनात कर्मियों की आईजी ने मांगी लिस्ट। 21 जून को योग शिविर और 25 को नवगछिया में माप तौल शिविर लगेगा। चैंबर के शिविर में निगम को 2.5 लाख राजस्व आया। सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने पर लगा प्रतिबंध। आरओबी निर्माण पर निगम सख्त, 24 घंटे में सुधार नहीं तो कार्रवाई। नालों में निर्माण सामग्री मिलने से जल निकासी बाधित। टेंडर घोटाला, रिशु श्री को 7 दिनों के रिमांड पर लेने के लिए एसवीयू ने कोर्ट में आवेदन दिया। 15 जून को होगी सुनवाई। संजीव हंस ने पटना छोड़ा मोबाइल बंद, गिरफ्तारी के लिए टीम बनी। कार बाजार में महंगे होते पेट्रोल डीजल, सीएनजी से ईवी को निर्णायक बढ़त। मार्च मई में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 40% बढ़ी, 2 साल में दुगनी हो जाएगी। होर्मुज बंद का असर, पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद अब साबुन बिस्किट नूडल्स की बारी। भारत 88% क्रूड आयात करता है, ये बड़ा जोखिम है। केंद्र ने कहा नेपाल में आम पर प्रतिबंध नहीं। केंद्र ने गुरुवार को नेपाल में भारतीय आम के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। 31 मई को पखवाड़े में बैंक कर्ज 17.65% और जमा 12.2% ही बढ़ा। शेयर बाजार में सेंसेक्स में 151 अंकों की गिरावट। निफ्टी आईटी इंडेक्स सिर्फ 7 दिन में 10.6% टूटा। यूरोप में ब्याज दरों में 3 साल में पहली बढ़ोतरी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को 3 वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। डिपॉजिट रेट 2% से बढ़ाकर 2.25% की गई। अब बात खेल जगत की। 16:30 चली रंगारंग सेरेमनी। आई लाइक इट मेक्सिको में शुरू हुआ सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप। दिग्गजों का महामुकाबला, अर्जेंटीना और पुर्तगाल दोनों टीमें फीफा वर्ल्ड कप के अलग अलग ग्रुप में। अंतिम 8 में भिड़ सकते हैं मेसी रोनाल्डो। फॉर्मेट और ब्रैकेट को देखते हुए मेसी और रोनाल्डो के बीच इस टूर्नामेंट में आमने सामने आने के समीकरण बन रहे हैं। बैडमिंटन में ऑल इंडिया क्लैश जीत कर क्वार्टर फाइनल में सिंधु और तन्वी पहुंची। दूसरा मैच बांग्लादेश में पहली बार कोई वनडे सीरीज हारा ऑस्ट्रेलिया। मेजबान 5 विकेट से जीता, 2-0 की बढ़त बनाई। 30 वर्षीय निखिल चौधरी T20 टीम में शामिल। 60 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से खेल सकता है भारत में जन्मा क्रिकेटर। वनडे रैंकिंग में लगातार 33 महीने से भारत नंबर 1 बना रहा।

अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता देते हैं आज क्या कुछ खास है। जी हाँ, आज कौन से खास दिन है? आज ही के दिन बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और कानून कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को बाल श्रम नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे आप नौकरी पर नहीं रख सकते, क्योंकि उनका हक होता है कि वो पढ़ाई करे, वो भी अपनी ज़िंदगी को बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज इस बात में पीछे है और आज भी कई सारे बच्चे काम कर रहे हैं क्योंकि उन तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। अगर शिक्षा अच्छे से पहुंच पाती है, वो मुफ्त शिक्षा को उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, तो फिर बाल श्रम की नौबत नहीं आती है। और आप कहीं भी अगर ऐसे किसी बच्चे को देखें बाल श्रमिक के रूप में, तो उन्हें कोशिश करें कि उन्हें व्यवस्था के अनुरूप और व्यवस्था को सौंपने की कोशिश करें और उन्हें बाल श्रम से बचाने की कोशिश करें। इन्हीं कुछ बातों के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं अंतिम विराम देते हैं और जाने से पहले कुछ ख़ास बात की अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ध्यान और अपने आसपास जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां ध्यान रखें कि आप गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर आप अपने आसपास को साफ रखेंगे तो ना केवल आप बल्कि आपके अपने परिवार और साथ ही आपका समाज भी स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और हमारे समाज की तस्वीर भी बदलेगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आपके रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पहले कुछ संदेश।

यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा।

0: बिजली बिल जीरो हो रहे हैं, गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
6: We signed this year a free trade agreement with Europe.
7: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
9: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
8: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से।

0: Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
1: India jo kiya hamare liye vaccine.
2: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
1: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
0: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: U.S. President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control of Iran's oil industry. In a social media post, Mr. Trump credited progress in discussions with high-level Iranian leadership as cause for the sudden change. He also suggested that progress has been made in talks to extend the fragile ceasefire. President Trump also said that a deal to end the war with Iran is nearly complete and is expected to be signed over the weekend in Europe. He made these remarks at the Oval Office in the White House yesterday. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the finals set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. Julian Quiñones scored Mexico's opening goal in the 9th minute to give the hosts a lead. Later, Raul Jimenez scored in the 67th minute, making it 2-0 for Mexico. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
4: Thank you, Sunil. In a landmark judgment, the Supreme Court of India has called homemakers nation builders and quantified their monthly care as 30,000 rupees, reports the Tribune. Union Home Minister Amit Shah has been quoted in the Pioneer as saying that the Armed Forces Special Powers Act will be withdrawn from the entire Northeast next year, barring one or two states. In its editorial piece titled, Green Energy Can't Yet Bend Climate Curve, the Indian Express argues that despite record growth in renewable energy, the world is still failing to slow global warming because major sectors remain dependent on fossil fuels. The paper says the clean energy transition must be accompanied by deeper industrial change, stronger policy support, technological innovation and international cooperation. Anthropic CEO Dario Amodei has sought serious and binding artificial intelligence rules and calls for mandatory testing and government powers to block risky systems, reports Financial Express. And finally, the Asian Age has quoted U.S. agency NOAA as confirming that the weather phenomenon El Nino has begun and will intensify into the end of the year, potentially to historic strength. And with that, it's back to you, Sunil.
3: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद पहले इस वक्त की खास खास खबरें मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मनवे सप्लाई निजाम और बैन अलाक्वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान की T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया अब खबरें तफसील से एक अहम वाक़े में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मस्कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा
6: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे
5: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूएकार नहीं लाया जा सका है नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निज़ाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मस्नूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मजीद तफसील हमारे नामानिगार से
7: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखा दही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुलाजिमत से मुतालिक पोर्टल डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को ये सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीक़ेकार को मुस्तहकम बनाएं और सारफीन को शामिल करने के निज़ाम को वसत दें लोगों से भी जोर देकर ये कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें शहरियों को ये सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान
5: वजीर खारजा जयशंकर ने मौजूदा

0: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मतनवे सप्लाई निज़ाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अलाक़वामी इश्तराक में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।
1: पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नज़रिया साज़ क़यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की समत सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जुरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज़ आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकद्दम के उसूल को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाय मुत्तहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैरसगाली का एक गहरा मुजाहिरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दितवा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकोव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदाम के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: صدر جمہوریہ دربدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے دو دن کے دورے پر رہیں گی. اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیشرفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں. اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے ایران کی تیل صنعت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی دی تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اعلی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں پیشرفت ہوئی ہے اور اسی لیے اچانک یہ تبدیلی ہوئی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سمجھوتا قریب قریب مکمل ہو گیا ہے اور یورپ میں ختم ہفتہ پر اس سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی امید ہے. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں یہ بات کہی. خواتین کا 10th آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ آج برمنگھم میں ایجبسٹن میں شروع ہو رہا ہے. ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. ایک ماہ طویل ٹورنامنٹ کی میزبانی انگلینڈ اور ویلز کر رہے ہیں. ٹورنامنٹ کا فائنل 5 کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا. بھارتی خواتین اتوار کو روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی. ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی ٹیم خواتین کا اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کے ارادے کے ساتھ میدان میں اترے گی. فیفا ورلڈ کپ 2026 کل رات شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ میکسیکو سٹی میں شروع ہوا ہے. پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا. کھیل کے 9 منٹ میں جولیان کوئنونز نے میکسیکو کے لیے پہلا گول کیا. بعد میں راؤل جیمینیز نے 67 منٹ میں گول کر کے اسکور میکسیکو کے حق میں 2-0 کر دیا. اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں عالمی موسیقی اور ثقافت کی جھلک پیش کی گئی جس میں شاکیرا اور برنابوئے نے شائقین کو مسحور کر دیا. بھارتی موسمیات محکمے نے آج دلی قومی راجدھانی خطے میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ اوسط بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان کے کچھ حصوں، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شمیم عرفان.
2: شکریہ فہیم. آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پر

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस

0: ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह आग्रह किया। उन्होंने हर घर नल का जल योजना के मद में खर्च की गई राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए निफ्टेम सहित शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों की स्थापना, 10 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित करने और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की भी अपेक्षा की है। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,365 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गरीब का अपना घर हो। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली की जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि विभाग ने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग द्वारा 8,054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पुलिस ने पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 88 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
1: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो हैं वो स्कॉलर हैं, कुछ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति संवाद का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति संवाद आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

0: इस दौरान कुलाधिपति के समक्ष विद्यार्थी और शिक्षक अपने विचार रखेंगे। संवाद में आए विचारों पर लोक भवन नीतिगत निर्णय लेगा। वहीं राज्यपाल ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ कम से कम एक विदेशी भाषा के अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में की जाए। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसान 40245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ICAR के हैदराबाद स्थित भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह पहल सामूहिक तिलहन अनुसंधान का पहला ऐसा प्रयास है जो देश के प्रत्येक किसान तक पहुंचाया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में सबसे अधिक 148 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सरायगढ़ भपटियाही में 106 मिलीमीटर और सुपौल के बलतारा में 70.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात 4-पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार और नीरज कुमार तथा ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 1 थाना प्रभारी सागर पासवान की बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की

थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाला यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगवानी वाली भारतीय टीम इतिहास रचने का प्रयास करेगी और अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप के दौरान 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे, जिससे यह आईसीसी महिला T20 विश्व कप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन तक रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में यह 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में केले, आम, पपीता, सेब और अमरूद के उत्पादन में वृद्धि से फल उत्पादन 1,214 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मौसम की खबर पर लिखा है, राज्य में समय से पूर्व मानसून की दस्तक, 7 जिलों में हुई झमाझम बारिश। दैनिक जागरण ने EOU की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लेखापाल का वेतन 50,000, 8 भूखंड समेत बनाई 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति। दैनिक भास्कर ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मांग का शीर्षक लगाया है, सम्राट ने केंद्र से मांगे 20,250 करोड़ और कई बड़े प्रोजेक्ट। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 7.5 CGPA वालों को ही मिलेगा 4थे वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, निशांत और पवन सिंह सहित 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। आज अखबार की सुर्खी है, सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन कोचिंग पर प्रतिबंध। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
1: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
0: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।
6: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद ले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए महालक्ष्मी अय्यर, हर्षदीप कौर और जस्सी को पटियाला हाउस फिल्म के इस गीत के लिए। संगीत तैयार किया है शंकर एहसान लॉय ने, गीत लिखा है अनविता दत्त ने।
7: This is something special.

श्रोताओं, आइए अब सुने रावण फिल्म का ये गाना। आवाज़ है इकॉन की, संगीत तैयार किया है विशाल शेखर ने, गीत लिखा है इकॉन ने।

श्रोताओं, इस गीत में आपने सुना इकॉन और हमसिका अय्यर को। संगीत तैयार किया था विशाल शेखर ने। फिल्म थी रावण। बोल थे विशाल दल्लानी और निरंजन अयंगर के। आइए अब सुने श्रेया घोषाल की आवाज में रांझना फिल्म का ये गीत। संगीतकार ए आर रहमान, बोल हैं इरशाद कामिल के।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का प्रसारण किया जा रहा है। आइए अब सुने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का ये गीत, तुलसी कुमार राहत फतेह अली खान की आवाजों में। संगीत तैयार किया है AR रहमान ने, आइए सुने ये गीत।

आइए अब सुने गीतकार शब्बीर अहमद का लिखा गाना सलीम मर्चेंट की आवाज में। संगीत तैयार किया है सलीम सुलेमान ने, फिल्म है लक।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार अनुपमा कुमारी हैं। आइए इनके स्वर में सुने ये गीत।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से
3: उमंग।
4: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अनुपमा कुमारी। आइए इनकी आवाज में सुने कबीर दास की ये रचना।

सुगम संगीत में कलाकार थी अनुपमा कुमारी। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, प्रातः के 10 बज चुके हैं। ये समय होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। आइए आरंभ करें गीता दत्त की आवाज के साथ। फिल्म है कागज के फूल, संगीत तैयार किया है सचिन देव वर्मन ने, अल्फाज हैं शकील बदायूनी के।

अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की मिलीजुली आवाजों में पत्थर के सनम फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म बहारों की मंजिल के इस गीत के लिए गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म लव स्टोरी से। आवाज दी है अमित कुमार ने, कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी ने, धुन है राहुल देव वर्मन का।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara. Because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से, सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, आइए अब सुने जब जब फूल खिले फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमे निगार आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आइए अब सुने किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की मिली जुली आवाजों में पड़ोसन फिल्म का ये गाना। बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीत तैयार किया है राहुल देव वर्मन ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में आज इतना ही। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आनंद लें लोकगीतों के कार्यक्रम का। लोकगीत में आज कलाकार हैं कपिल देव ठाकुर। आइए आरंभ में इनकी आवाज में सुने ये शिव भजन।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना रूप कुमार राठौर और विशाल मिश्रा की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार थे अनु मलिक और मिथुन। आइए सुनते हैं धड़क टू फिल्म का ये गीत विशाल मिश्रा की आवाज में। रश्मि विराग का गीत है, संगीतकार हैं जावेद मोशन।

0: नई फिल्मों से कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
0: Nexa.
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है नई फिल्मों से कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और फिल्म है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। आवाजें हैं अमित मिश्रा, नक्श अजीज, श्रेया घोषाल और अंतरा मित्रा की। गीत जयराज का और संगीत APS का है।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर जुड़ेंगे कार्यक्रम से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है नई फिल्मों से कार्यक्रम में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं परम सुंदरी फिल्म का गीत। आवाजें हैं सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य की। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, आज के गुलदस्ता में आज के कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत की दस्तक है जिसकी धुनें सुनते ही कंधे अपने आप झूमने लगते हैं, पांव थिरकने लगते हैं और चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान फैल जाती है। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के सबसे अलग, सबसे बेपरवाह और सबसे ठसक वाले संगीतकार।

0: ओमकार प्रसाद नैयर यानी ओपी नैयर को।
1: तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी।
0: 23 जनवरी 1926 लाहौर की मिट्टी में जन्मे ओंकार प्रसाद नैयर शुरू से ही रागों की कैद में बंधने वाले नहीं थे। जहां ज्यादातर संगीतकार शास्त्रीय रागों की पाठशाला से आते थे, वहीं ओपी नैयर लय को गुरु मानते थे। उनका मानना था, अगर ताल दिल को पकड़ ले तो सुर अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो यही वजह रही कि उनके संगीत में किताबों से ज्यादा जिंदगी की धड़कन सुनाई देती है। 1952 की फिल्म आसमान और गाना प्यार की राहों में थम गया कारवां, यहीं से फिल्म इंडस्ट्री ने समझ लिया था कि कोई अलग किस्म का संगीतकार आ चुका है। लेकिन असली धमाका हुआ गुरुदत्त के साथ। तो दोस्तों, बातें हम आगे करेंगे कि गुरुदत्त के साथ उन्होंने कितनी सारी फिल्में बनाई, कितनी सारी धुनें बनाई और कैसे कैसे उनका संगीत का कारवां आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे मोड़ आए। आज हम सारी बातें करेंगे ओपी नैयर साहब के बारे में। लेकिन इस बीच उनका पहला जो हमने गीत लिया है फिल्म नया दौर से, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में, तो आइए सुनते हैं।

ओपी नैयर के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं। तो ओपी नैयर एक ऐसा नाम दोस्तों जिसने फिल्म संगीत को सिर्फ सुरीला नहीं, नटखट, चंचल और बेफिक्र बना दिया। उनकी धुनों में पंजाबी लोक गीतों की मस्ती थी और वेस्टर्न बीट्स की चमक थी, और साथ ही था भारतीय दिलों की धड़कन। 1950 और 60 का दशक जब रेडियो बजता था तो घरों में काम रुक जाता था, और अगर ओपी नैयर की धुन होना तो पांव खुद बखुद थिरक उठते थे। ये देशवीर जवानों का सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है अभी भी, और बूझ मेरा क्या नाम जब हम उनका सुनते हैं वो गीत तो आंखों में शरारत सी उतर आती है। आप जब उनका गीत सुनेंगे ना आइए मेहरबान, तो जैसे शाम खुद मुस्कुरा उठती है। दोस्तों ओपी नैयर का संगीत कभी बोझिल नहीं होता, कभी थकाता नहीं। वो कहते थे संगीत ऐसा बनाओ जो दिल से निकले और सीधे दिलों तक पहुँचे, और सच कहें उनकी हर धुन दिल का रास्ता जानती थी। पता है गायिकाओं में अगर किसी की आवाज़ ओपी नैयर की पहचान बन गई तो वो थी आशा भोंसले। आशा जी की चंचल, खिलंदड़ी और कभी कभी शरारती आवाज़ ओपी नैयर की धुनों पर जैसे इत्र बनकर बिखर जाती थी। मांग के साथ तुम्हारा, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कभी आर कभी पार, इन गीतों में आशा जी और ओपी नैयर की जुगलबंदी आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है। लेकिन ये भी सच है कि गीता दत्त जी के साथ उन्होंने एक से एक धुनें रची। गीता दत्त जी ही वो गायिका थी जिनके साथ उन्होंने बहुत ही प्यारे से गीत रचे, और हमेशा वो कहते थे कि गीता दत्त जी की जो आवाज़ है वो मेरे गीतों के लिए बहुत परफेक्ट है। आशा जी तो बाद में आई और गीता जी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, तो क्यों ना इस बीच हम गीता दत्त जी की ही आवाज़ सुन लें उनकी धुन में। ये फिल्म है CID, साथ में है मोहम्मद रफ़ी, और आइए सुनते हैं आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।

दोस्तों, आज के गुलदस्ता में हम किसी संगीतकार को सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस दौर को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं जब गीत सुनते हुए आंखों में चमक और पांव में थिरकन आ जाया करती थी। आज हम बात कर रहे हैं उस फनकार की जिसके संगीत में दुख भी मुस्कुरा देता था और खुशी ताल पर नाच उठती थी। तो ऐसा ही नाम है ओपी नैयर साहब का, जिनकी धुनें सुनते ही आज भी हर कोई थिरक उठता है। पता है दोस्तों, ओपी नैयर साहब वो संगीतकार थे जो रागों की दीवारों में कैद नहीं रहते थे। वो लोक गीतों से, लोक संगीत से दोस्ती करते थे और वेस्टर्न म्यूजिक से आंख मिचौली और भारतीय भावनाओं से दिल की बात करते थे। उनकी धुनों में ढोलक की थाप थी, बोंगो भी था, क्लैप्स भी, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो थी ज़िंदगी की हल्की सी शरारत। क्योंकि ओपी नैयर साहब के गीत रोने के लिए नहीं बने, जीने के लिए बने थे। जब वो कहते कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी, तो हवा भी ठहर कर सुनती थी। जब कभी वो धुन बनाते थे, कभी आर कभी पार, तो लगता था जिंदगी भी झूले पर झूल रही है। दोस्तों, उनकी धुनों में कभी भी उदासी का अंधेरा नहीं उतरता था, और अगर दर्द भी हो तो वो भी नाजुक सी मुस्कान पहन करके आता था। इस बीच हम एक और गीत उनका लेकर के आए हैं, फिल्म कश्मीर की कली से। आवाज़ें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार SH बिहारी और संगीतकार तो ओपी नैयर। आइए सुनते हैं ये गीत।

ओपी नैयर साहब के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उनकी धुनों को हम सुन रहे हैं, साथ ही गुनगुना रहे हैं, क्योंकि ओपी नैयर साहब के गीत बजें और कोई उसके साथ ताल ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये भी सच है कि उन्होंने जितने शरारत भरे गीत रचे, उतने ही संजीदा गीतों को रचने में भी उन्हें महारत हासिल की थी। अभी आपने ये गीत सुना ना, इशारों इशारों में, कितना संजीदा प्रेम गीत है। अच्छा लगता है ओपी नैयर साहब के गीतों को सुनना और उनके साथ उन्हें गुनगुनाना। तो दोस्तों, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। कई नए संगीतकार आए, नया दौर आया और ओपी नैयर साहब धीरे धीरे खामोशी में चले गए। लेकिन क्या कोई कलाकार कभी सच में चला जाता है? क्योंकि ओपी नैयर साहब धीरे धीरे संगीत की दुनिया से, पर्दे की दुनिया से अपने आखिरी वक्त में दूर हो गए थे। कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने धुनों से तौबा कर ली थी, धुनों को छोड़ दिया था। हाँ, कई भक्ति गीत उस बीच उन्होंने रचे, लेकिन वो भी काफ़ी आग्रह के बाद। तो क्या कोई कलाकार सच में चला जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब तक ये रेडियो है, जब तक पुराने गीत हैं और जब तक हम गीतों को सुनते रहेंगे, ओपी नैयर साहब हमेशा हमारे बीच रहेंगे। आज भी जब अचानक कहीं बज उठता है लेके पहला पहला प्यार, तो दिल वही पुराना हो जाता है। ओपी नैयर साहब की जो धुन है ना, उनकी जो धुनें हैं, वो हमें आज भी सिखाती हैं कि ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से मत लो, थोड़ा इठलाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और थोड़ा धुनों पर चलना भी सीखो। अभी देखिए ना, एक और गीत है आपके लिए, बहुत प्यारा सा गीत। फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना, आवाज़ें आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की। तो आइए सुनते हैं और गुनगुनाते हैं ये गीत।

दोस्तों, ढेर सारी धुनों को हमने आज सुना, ढेर सारे गीत सुने, और ओपन एयर साहब के बारे में जो हमने बातें की, तो दोस्तों आज के रिमिक्स के दौर में भी जब कहीं भी कजरा मोहब्बत वाला या आइए मेहरबान बजता है तो नई पीढ़ी भी कह उठती है कि इस गाने में कुछ अलग बात है। हाँ दोस्तों, वो अलग बात ओपी नैयर साहब ही रच सकते थे, क्योंकि कुछ धुनें कानों से नहीं सीधे आत्मा से बातें करती हैं, और ओपी नैयर साहब ऐसे ही धुनों को रचते थे। तो दोस्तों, ओपी नैयर साहब कभी रागों में नहीं बंधे, इसीलिए वक्त भी उन्हें बांध नहीं पाया। वो आए, मुस्कुराए, इठलाए, इठलाती हुई धुनें दी और खामोशी से चले गए, लेकिन उनकी ताल आज भी हमारे दिलों के साथ चलती है। जब भी ढोलक की आवाज़ गूंजेगी, जब भी ताल ठसक से बोलेगी, तो कहीं ना कहीं ओपी नैयर साहब मुस्कुराते हुए ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों, आप भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ओपी नैयर साहब की धुनें बार बार हमें यही इशारा करती हैं कि इटलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब आज के कार्यक्रम का तो समय भी समाप्त हो रहा है, तो मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में कुछ और गीतों के साथ, कुछ और बातों के साथ। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी जिंदगी को सुरीला बनाए रखिए। दीजिए विदा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। आइए शामिल होते हैं महिलाओं के कार्यक्रम नारी लोक में। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज के नारी लोक को आरंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। बहनों, आज हम बहनें सुनेंगी आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बहनों की पसंद। और आइए बहनों, अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं आज की चर्चा से। बहनों, बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है, यानी आज के दिन हम इस दिवस को मना रहे हैं। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम की रोकथाम और इसे जड़ से खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और सक्रियता रखना है। साथ ही समाज को यह बताना है कि बाल मजदूरी बच्चों को उनके बचपन और अधिकारों से वंचित करती है। हर बच्चे के लिए शिक्षा, गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सरकारों और संस्थाओं को बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए मजबूत नीतियां बनाने को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। आज के इस दिन का उपयोग विश्व भर में बाल श्रम में धकेले गए बच्चों को होने वाली हानिकारक मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। अतः आइए बहनों, आज के दिन के महत्व को समझते हुए बाल श्रम को रोके तथा समाज में सभी को इसके प्रति जागरूक करें ताकि हर बच्चे का बचपन सुरक्षित रहे। बहनों, अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
0: बहनों, अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करते हैं। बहनों, आइए अब आरंभ करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बहनों की पसंद। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने फिल्म चांदनी से लिया है। स्वर है लता मंगेशकर और बावला मेहता का। इस गीत को पसंद करने वाली बहनें हैं सबौर रानी तालाब भागलपुर से, बेबी तनीषा, सोनी, जया, मुन्नी लालूचक भट्टा रोड से, शीतल, चंदन, रितु, मुन्नी बरारी हाउसिंग कॉलोनी भागलपुर से, प्रिया, मेघा, रूपा, रजनी कुमारी, जूली कुमारी। तो आइए बहनों, इस प्यारे से गीत का आनंद।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। स्वर है लता मंगेशकर का। इस गीत को सुनना चाहा है खंजरपुर भागलपुर से पीहू नीसू रिशु संजना, आदमपुर भागलपुर से चंदन कंचन प्रिया और शीलू, स्टेशन रोड भागलपुर से सुनीता कुमारी विनीता कुमारी सोनी कुमारी। तो आइए बहनों इस गीत को सुनते हैं।

इस गीत के लिए फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो, स्वर है पलक मुछाल का। इसे पसंद करने वाली श्रोता बहने हैं तिलका मांझी हटिया रोड से, मीठी देवी, सोनी देवी, सोनम कुमारी और प्रियंका कुमारी, बरारी हाउसिंग कॉलोनी से राधा देवी, सीता देवी, रुक्मिणी देवी, शीलू, प्रिया, सजनी और घर की सभी बहने, इशाकचक विसरी स्थान से शीलू, मीनू, रीना, सीमा, जूली, चंदन और ट्विंकल।

इस गीत के लिए फिल्म का नाम है बेटा स्वर है अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा का। इस गीत को सुनना चाहा है भिखनपुर गुमटी नंबर 2 से सिमरन रूही जूली शीना और शिबा, भिखनपुर गुमटी नंबर 12 से जयंती मेघा रूपा नैना रागिनी और बेला, लालूचक भट्टा रोड से सुरैया सुनैना पूनम संगीता और माधुरी। तो आइए बहनों इस गीत को सुनते हैं।

बहनों, इस अंतिम गीत के साथ ही हमें अनुमति दें बहनों, चलते चलते थोड़ी बातें खुद के लिए। बहनों, इस मौसम में अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहनों, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें। और अब घड़ी की सुइयां हमारे समय की समाप्ति की ओर इशारा कर रही हैं, हमें यही अनुमति दें। नमस्कार।

नारीलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है, कृपया जुड़े रहें हमारे साथ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
5: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
6: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में, ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ।

0: आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
1: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
0: रूबरू होंगे आप खबरों से,
1: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
0: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
1: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
0: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर
1: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
0: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
1: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
0: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेज नारायण चौधरी और साथियों के गाये लोकगीत। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए देवी गीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं तेज नारायण चौधरी और साथियों के गाए लोकगीत।
2: रे सो

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम हम एक बार फिर आपको सुनवाएंगे 1:20 पर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों के रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों का बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता जताई और उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो।
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
0: जामताड़ा जिले में किसानों, व्यवसायियों और समाज सेवियों सहित हर वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। प्रगतिशील किसान अभय कुमार सिंह सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।
3: किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,003 किस्त में देकर उन्नत कृषि करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया और आज किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर बीज खाद खरीदकर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं, उन्नत बीज उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में करीब 1,000 कैदियों की रिहाई के लिए लिखित सुझाव दिए गए हैं। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों का बकाया राशन और कल्याणकारी सामग्रियां एक मुश्त देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने धोती साड़ी, नमक और दाल योजना का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर शुरू कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही सभी पात्र परिवारों को बकाया सामग्री मिल जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें एचएलएल हेल्थकेयर ने अस्पताल निर्माण और उपकरण खरीद पर प्रस्तुति दी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने एचएलएल को 7 दिनों में विस्तृत प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ट्रॉमा सेंटरों के रूप में विकसित करने और कम क्षमता वाले अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। चालू सत्र में इस विंग की रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ यह विंग झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह विंग राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से ही सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने दुमका में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों से साफ है कि महागठबंधन बिखर चुका है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 24 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
4: तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी नाथवाने जी पिछले बार के अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का तरह से विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है। मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।
0: देवघर पुलिस ने जसीडीह स्टेशन के पास से 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 76 ग्राम मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपी रेल मार्ग से नशा लाकर देवघर में सप्लाई करते थे।
5: सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पे रेड करने गई, तो उस टीम ने नजर रखा और फिर देखा कि 2 लोग ट्रेन से आए और वहाँ ब्राउन शुगर डिलीवर करने के लिए आए थे। उनके बदले 63,000 रुपए ये लोग नगद देने वाले थे और इनको ट्रांजैक्शन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और 76.19

0: ग्राम क्रॉसओवर की बरामद की हुई है।
1: घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने

के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। म्यूनिख विश्व कप से लौटने के बाद बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले राणा का जाना खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बेहद मिलनसार बताते हुए देश में निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को सराहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में ही सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं तेज नारायण चौधरी और साथी।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: तेज नारायण चौधरी और साथियों को आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:30 हुए हैं। आरंभ होता है ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभ्य बहन का राधा के नमस्कार। बहन, उम्मीद करे छे कि तो सब कुशल मंगल हो और सब काम काज बढ़िया से होए रहलो होते। बहन, आए हम अपना से एगो एहनो विषय पर चर्चा करवे जे अपना देश के भविष्य से जुड़लो छे। वो विषय छिके बाल श्रम, यानी छोटा छोटा बच्चा से काम करवाना। वो बच्चा जकरो हाथों में किताब होना चाहिए, हेकरो हाथों में औजार पकड़ाए दे छे। बहन, बाल श्रम की होय छे पहिने ओकरा बारे में जानबे। जब 14 साल से कम उम्र के बच्चा का स्कूल भेजे के जगह फैक्ट्री, दुकान, ढाबा, घर या खेतों में कामों पर लगाए दे छे, तो ओकरा बाल श्रम कहे छे। बहन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा बाल मजदूरी में शामिल छे। ई बच्चा ईट भट्टा पर, पटाखा के फैक्ट्री में, होटल में, बर्तन धोए में, कूड़ा बिनय में मिले छे। बहन, बाल श्रम कहना होय छे एकरो बहुत कारण छे, जेना कि गरीबी। माय बाप के पास पैसा नहीं होय छे, पेट भरे के लिए मजबूर होकर बच्चा का काम पर भेजी दे छे। अशिक्षित माता पिता जकरा कि पढ़ाई लिखाई के महत्व नहीं पता छे, वो बच्चा का भी स्कूल नहीं भेजे छे। माय बाप का कर्जा रहे छे तो ओकरो बदली में बच्चा का गिरवी रखी दे छे, जकरा बंधुआ मजदूरी कहलो जाए छे। बहन, बाल मजदूरी से बच्चा सनी के बहुते नुकसान होय छे, जेना कि शरीर पर असर होय छे, बच्चा कमजोर रह जाए छे, दिमाग पर असर होय छे, भविष्य खराब हो जाए छे। बहन, सबसे बड़ो नुकसान होय छे कि बचपन छीनी जाए छे। लेकिन बहन, खुशी के बात ई छे कि अपना भारत सरकार सुती नहीं रहलो छे, कानून बहुत सख्त छे। बाल श्रम निषेध कानून 1986, जैमे 14 साल से कम उम्र के बच्चा से खतरनाक काम कराना जुर्म छिके, 2026 में होकरा आरो सख्त करी दिलो गेलो छे। शिक्षा के अधिकार 2009 ईस्वी के अधिकार शिक्षा के अधिकार

0: छह से 14 साल तक के हर बच्चा का मुफ्त और जरूरी पढ़ाई देना सरकार के जिम्मेदारी छे। बहिन, अगर कोई बाल मजदूरी करे तय करता पकड़ाए जेते तो होकरा 6 महीना से लय करी का 2 साल तक जेल आरो 20,000 से 50,000 तक के जुर्माना हुआ पारे छ। बहिन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 छिके, अगर कोई काम करता देखो तो इ नंबर पर फोन करी का जरूर सूचना देना चाहिए आरो नाम बताना अपना जरूरी नहीं छे। बहिन, सरकार और समाज ये में की करी रहलो छे होकरा बारे में जानबे। मिड डे मील योजना, स्कूल में दोपहर के खाना मुफ्त मिले छे ताकि गरीब माय बाप बच्चा का स्कूल भेजे। बचपन बचाओ आंदोलन, नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जी ने 1 लाख से ज़्यादा बच्चा का बाल मजदूरी से छोड़ेना छे। नया सवेरा योजना, जे बच्चा काम से छोड़ेलो जाए छे ओकरा स्पेशल स्कूल में पढ़ाए का मुख्य स्कूल में दाखिला दिलाए छे। बहिन, ये में हम्मा सनी की करा पारे छे, जना कि हमरा सनी का चौकस रहना छे, 1098 पर कॉल करना छे, भेदभाव नहीं करना छे, जागरूकता फैलाना छे। बहिन, अंत में यह बात कहल चाहे छे और शपथ लेना छे हमरा सनी का कि कोई भी देश के तरक्की सड़क और बिल्डिंग देखी का नहीं हुई छे, बल्कि ई देखी का पता चले छे कि वहाँ का बच्चा कितना खुश छे। बहिन, महात्मा गांधी जी ने कहना छे, देश के भविष्य क्लासरूम में लिखलो जाए रहलो छे। अगर बच्चा क्लासरूम के जगह कारखाना में होते तब भविष्य अंधेरा में रहते। तो बहिन, यही लिली हम असनी आज शपथ लेवे कि बाल श्रम का कहियो बढ़ावा नहीं देवे आरो बच्चा सनी का या ओकरो माय बाप सनी का बच्चा का पढ़ाई लिखाई ला स्कूल भेजे के लिए प्रेरित करबे। तब बहिन, कार्यक्रम में हम असनी आरो आगू बातचीत करबे, तब तक कुछ जरूरी संदेश सुने छे।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
0: एक बार फिर से सभ्य बहन के स्वागत छे उनको मनपसंद कार्यक्रम में। तब बहन, अब एक हमसनी गीत सुने छे, कलाकार छिके नूतन कुमारी।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: वाह बहिन, बड़ी बढ़िया ये भोला बाबा के गीत सुन लिए हम सुनी। आरो बहिन, नारी शिक्षा समाज के समग्र विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता आरो लैंगिक समानता के लिए बहुत आवश्यक है। तो आव बहिन यही से जुड़लो एगो पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जानकारी लेवे। वार्ताकार छिके अंजलि शर्मा, लेकिन बहिन ओकरा से पहिने कुछ जरूरी संदेश सुनित छे।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: भारतीय समाज के सही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वुमेन एजुकेशन अर्थात नारी शिक्षा बेहद ही जरूरी है। महिला एवं पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है, उसी तरीके से समाज का विकास भी पुरुष और महिला के कंधों पर आश्रित है। दोनों ही देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए दोनों को ही बराबर शिक्षा का हक मिलना बेहद जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक का भी शिक्षा का स्तर गिरा तो समाज की प्रगति होना नामुमकिन है। भारत की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों की पहली शिक्षक माँ ही होती है।

उन्हें जीवन की अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत कराती है। अगर नारी शिक्षा को नजरअंदाज किया गया तो देश के भविष्य के लिए या किसी भी खतरे से कम नहीं होगा। अगर माँ शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। हम महिला साक्षरता के सारे लाभों को तो गिनती नहीं कर पाएंगे, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि एक शिक्षित महिला अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकती है और उन्हें अच्छे और बुरे का सही ज्ञान भी दे सकती है। सामाजिक तथा आर्थिक कार्य करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकती हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर घर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग भी कर सकती हैं। एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु एक स्त्री को शिक्षित करके हम एक पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। महिला साक्षरता की कमी देश को कमजोर बनाती है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं को उनकी शिक्षा का हक दिया जाए और उन्हें किसी भी तरह पुरुषों से कम ना आका जाए। आज के समय में भारत महिला साक्षरता के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहादुर और साक्षर महिलाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर सावित्री बाई फूले का नाम आता है। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती दोयम दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। स्कूल जाना तो पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई फूले ने 9 छात्राओं के साथ मिलकर पहले स्कूल की स्थापना की। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदियां थी। सावित्रीबाई फूले न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त। और भी कई बहादुर और साक्षर महिलाएं हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वेदों की ज्ञाता, दर्शन शास्त्री, गार्गी, विश्वभरा, मैत्री, ये महिलाएं भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। समाज और देश के लिए दिए गए उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। नारी शिक्षा परिवार में विनम्रता और सहनशीलता प्रदान करती है, बल्कि समाज और देश में सामाजिक और आर्थिक मजबूती को सही दिशा भी देती है। सरकार को महिलाओं के विकास के लिए एक बेहतर विद्यालय और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराते रहना चाहिए, ताकि स्त्री शिक्षा को मजबूती मिलती रहे। और एक शिक्षित महिला ही समाज को एक शिक्षित नागरिक भी दे सकती है। जब महिला खुद साक्षर होगी तो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, जो कि बड़े होकर एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएंगे और देश की तरक्की में बेहतर योगदान दे सकेंगे। इसलिए देश की महिलाओं का शिक्षित होना बेहद ही जरूरी है। भारत में स्त्रियों की स्थिति समय समय के साथ बदलती रही है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं। स्त्री शिक्षा से बौद्धिक विकास प्राप्त होगा, जिससे समाज के व्यवहार में सरसता आएगी। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलाएं पुरुषों का संपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शांति और खुशहाली का स्रोत होती हैं। स्त्री शिक्षा हमारे संस्कृति के ऊर्जा और विकास का संचार है। जब कभी नए समाज की स्थापना की जाती है तो शिक्षित महिलाएं एक बेहतर आकार और व्यवस्था प्रदान करती हैं। महिला शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ योजनाएं भारत सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, रोजगार तथा आमदनी हेतु प्रशिक्षण केंद्र। भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ कारण भी हैं, जिसके कारण महिलाएं शिक्षित होने में पीछे रह जाती हैं। कुपोषण तथा भरपेट खाना न मिलना, नाबालिग उम्र में यौन उत्पीड़न, माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति, कई तरह की सामाजिक पाबंदियां, उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति भी न होना एक बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा के लिए। अब बहुत सारे बदलाव भी समाज में देखने को मिल रहे हैं और समाज की स्त्रियां भी जागरूक हो रही हैं शिक्षा के प्रति। सरकार स्त्री शिक्षा के लिए काफ़ी जागरूक है और चाहती है कि भारत की हर स्त्री शिक्षित हो, समाज में अपना योगदान दे और अपने बच्चों को भी शिक्षित करे। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने तथा आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा ही सहायता करती है। शिक्षा न सिर्फ महिलाओं का समाज में स्तर ऊँचा करती है, बल्कि महिलाओं के प्रति समाज की उस संकीर्ण सोच जिसमें उन्हें माँ बाप पर बोझ की तरह देखा जाता था को भी खत्म करती है। शिक्षा महिलाओं को पुरुषों की भांति समाज और देश की प्रगति के पथ

0: पर ले जाने के कर्तव्य से भी अवगत कराती है। शिक्षित महिलाएं ही देश, समाज और परिवार में खुशहाली लाती हैं। शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अलग से विशेष योजनाएं भी चलाई जाती हैं। गाँव में महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनके लिए रोजगार संबंधी अवसर भी बढ़ाने चाहिए, जिससे वे शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सके और अपने परिवार और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके। आज के युग में भारत का अन्य देशों से पीछे होने का मुख्य कारण महिलाओं को उचित शिक्षा न मिलना भी है। प्राचीन काल से स्त्रियों पर अत्याचार और पाबंदियां बढ़ती रही हैं, जिसका मुख्य कारण स्त्री शिक्षा को महत्व न देना है। किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। यह एक तरह से उस दवाई की भांति है जो मरीज को ठीक होने में मदद करती है और उसे फिर से सेहतमंद बनाती है। शिक्षित महिला उस तरह का औजार है जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर हुनर तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती है। कुछ उदाहरण भी शिक्षित महिलाओं के देखने को मिलते हैं। श्री निर्मला सीतारमन, कल्पना चावला जैसे शिक्षित महिलाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक शिक्षित नारी ही एक आदर्श गृहिणी बन सकती है। वह अपने घर, परिवार, बच्चों के हित अहित, सही गलत के फैसले सही तरीके से कर सकती है और अपने परिवार के विकास में एक स्तंभ बनकर खड़ी हो सकती है। एक अशिक्षित नारी की तुलना में शिक्षित नारी परिवार के आय व्यय का लेखा जोखा अच्छी तरह से रख सकती हैं और अपव्यय से भी बचा सकती हैं। वह अंधविश्वास और आडंबरों से मुक्त रहने के साथ साथ ही परिवार में इस तरह के विचारों को टोकने में भी प्रभावी होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि एक नारी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाकर न केवल अपने सुचरित्र का निर्माण करती है बल्कि अपने विचारों की छाप भी समाज में और अपने परिवार पर छोड़ती है। एक शिक्षित नारी आदर्श पत्नी, कुशल गृहिणी, आदर्श माँ, बहन किसी भी रूप में देश व समाज की अशिक्षित नारी की तुलना में बेहतर एवं कुशल रूप से अपनी सेवाएं दे सकती हैं। जिस समाज व देश की नारियां सुसंस्कृत होती हैं वह हमेशा तरक्की के शिखर पर आड़ूढ़ होता है। इसी कारण कहा गया है शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: बहन बहुत अच्छा हम असनी वार्ता सुन लिए, बहुत अच्छा जानकारी मिल रही हम असनी का। तब अब एकटा आरो गीत सुनै छियै।

0: बड़ी बढ़िया सोहर सुन लिया बहिन, और ये गीत भजन सुने में समय के पता ही नहीं रहले, और अपना सिंह से विदा ले के समय हो गेले। अगला दिन फेनू से कुछ नया बातों पर चर्चा करबे, तब तक हमरा विदा दिए। सभ्य का राधा के नमस्कार।
1: ये था ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। साथ ही एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाले रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 पृष्ठ कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। गौरतलब है कि देर रात सड़क दुर्घटना में मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलाड़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार और रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती

0: पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत सोगवार कुंभों के साथ है। गौरतलब है कि देर रात सड़क हादसे में मधेपुरा जिला के अरार थाना इंचार्ज अमरेंद्र कुमार, बेलारी थाना इंचार्ज नीरज कुमार और रतवारा थाना इंचार्ज साजन कुमार और कार ड्राइवर की मौत हो गई थी। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में अतफाल मजदूरी की लानत को ख़त्म करने और लोगों को उसके तई बेदार करने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। इस साल इस दिन का थीम है अतफाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए गैर जानबदाराना खेल, बालिगान के लिए काबिल एहतराम काम। इंसदाद अतफाल मजदूरी के दिन के मौके पर पूरी रियासत में कई बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने रियासत के लोगों से बच्चों की हिफाजत, उनकी तालीम, सेहत और काबिल एहतराम बचपन को मजीद मजबूत बनाने की दरख्वास्त की है। नायब वज़ीरे आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनके हुकूक दिलाने के लिए पुरअज़्म रहने की अपील की है। वहीं वसाइल मेहनत के वजीर अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रियासती हुकूमत अतफाल मजदूरी से पाक बिहार मुहिम के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। रियासत में मानसून के असर से बारिश की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में जबरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इधर रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। अररिया जिला के अलग अलग थाना इलाकों से पुलिस ने शराब, नशावर अशिया और ममनुआ कफ सिरप के साथ 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा नगर थाना इलाके के यहियापुर मोहल्ला से पुलिस ने एक ऑटो पर से कसीर मकदार में शराब के साथ 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज

दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल,

0: राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का सातवां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत

0: सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा।

0: उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस कार्यक्रम की रैना तवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं किसी एक कलाकार की, फिल्मी जगत से जुड़े हुए किसी भी कलाकार के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा को जिनकी अदाकारी ने 60 के दशक में धूम मचा दी थी। जी हाँ, हम नाम नहीं बताएंगे। हिंदी सिनेमा में हर कोई अपनी पहचान बनाने का मोहताज होता है, लेकिन कुछ हीरे ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपनी चमक बरकरार रखते हैं, युगों युगों तक उनके नाम के चर्चे कायम रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती और ऐसी नगीना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने अभिनय के अलावा अपनी हेयर स्टाइल से भी लोगों को बहुत लोकप्रिय रही, बहुत ही दिल को लुभाने वाली रही। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता गेस कर चुके होंगे, तो देर किस बात की। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो आपको पहचानना है, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो गेस कीजिए और हमें बताइए कि किसकी हम बात कर रहे हैं। ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। आपके मैसेज का, संदेश का हमें रहेगा इंतजार। तब तक सुनते हैं ये वाला इनका गीत।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म सरस्वती चंद्र में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म संगम से लिया है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

साहिर लुधियानवी का गीत अभी आपने सुना, रोशन का संगीत। गायक कलाकार थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर। फिल्म थी दिल ही तो है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नजराना से। आइए सुनते हैं।

0: ना।
1: क्यों?
0: इसलिए कि शर्मा न जाए।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
5: तिलका मांझी तो बहुत।
4: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
5: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।
8: संदेशों के बाद एक बार फिर शामिल होते हैं चित्रपट से कार्यक्रम में। संदेशों के पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म नजराना में, और अब सुनते हैं शैलेंद्र का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर मुकेश की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म आशिक से।

लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए फिल्म मिलन में कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, मीडियम वेव पर आज की ये सभा अब संपन्न होती है। एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप सुन सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे से मीडियम वेव पर आप पुनः सुन पाएंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।

0: जो इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से ट्राई कर रही थी
1: जी। हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: दीदी प्रेम रतन धन पायो।
1: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
0: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
1: जी,
0: ही है।
1: जी तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी क्या बात है,
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है
1: जी, मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले,
0: जी,
1: खाकी
0: जी,
1: कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे। उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्चे अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है, मैं ना भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धनंजय सवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धनंजय सवाल। धनंजय, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं
0: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और अब 2 लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन

0: पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: आप ही की बिन।
0: जी तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी।
1: बताइए
0: जी, हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ
0: जी। तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गह।

जब से तुमको ठाकुरा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन पे, बैठे हैं

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा हाँ। चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं हूँ, और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटे चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती चौक है, रसवंती
0: जी
1: बनने की।

0: रेस्क्यू सेंटर। हाँ
1: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: है।
0: बहुत
1: और
0: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
1: जी बिल्कुल, तो आप
0: हाँ
1: अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
0: हाँ उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
1: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का
0: हाँ
1: साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
0: यस
1: हैं, सभी का एक
0: हाँ हाँ
1: अपना अपना
0: यस
1: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
0: बहुत बहुत बहुत। हाँ
1: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
0: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
1: जी जी तो मैं ये
0: हाँ
1: पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे
0: हाँ
1: थे तो गर्मी की छुट्टी
0: हाँ
1: के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों
0: हाँ
1: में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो
0: यस
1: बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे हुआ करता था आपके घर में?
0: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के ड्राइंग के इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, मैं बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
1: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
0: ओ बहुत बहुत
1: करते थे?
0: हाँ ये शाम भी कर देते ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
1: हाँ
0: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
1: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ
0: हाँ
1: साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
0: बहुत बहुत मैम
1: जी। आपसे बात करके हमें
0: बहुत बहुत।
1: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
0: हाँ
1: बताइए आप
0: हाँ
1: कौन सा
0: मुझे
1: गीत
0: जिंदगी
1: सुनना चाहती हैं?
0: हर कदम एक नई जंग है उनको पसंद
1: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है
0: है
1: इसलिए आप सुनना चाहती हैं।
0: बहुत पसंद है यस
1: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे के मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी मैं मंचन भी करती हूँ। मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक
1: जी। ए मेरे हम सब

0: पर एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकू दिल में और छूटे ना अपना साथ, धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: गाने का मौज लेते हैं दिन भर, विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की
0: जी। मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर दे बनाते
0: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं।
0: अच्छा,
1: जॉब वाले तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पर रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी।
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में, करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो

0: अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए? इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं नहीं मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी
0: जी। सिकंदरा से? तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है
0: अच्छा
1: और बालाघाट है
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है?
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ दीदी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के, एक है, एक मेरा है। हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी।
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नमन परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40% पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नींद दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई। चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है। हाँ तो क्या हुआ, क्यों मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या। बात टालकर चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही।

11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद के

अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी।

एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे, आखिर क्या कहें। मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा।

आ इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की

बात कर रही थीं और फिर उनकी शादी हुई। मम्मा कुछ बार आईं लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती? जब आती थीं तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थीं। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गईं और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा।

0: अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों, पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता अरविंद कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवा ने इस बात को खत्म सा करती हुई बोली।
0: बस ठीक?
1: हाँ भाई ठीक
0: बस।
1: अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
0: हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा।
1: दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ।
0: परेशान हो क्या?
1: हाँ थोड़ा परेशान हूँ।
0: बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा।
1: नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी।
0: अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर

खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा, मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

मीडिया वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब पेश है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम

आज युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके युवा दोस्त अर्पिता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी मेरी तरह एकदम स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे विश्व बाल श्रम दिवस पर, वहीं डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स में देंगे रेडियो से जुड़ी खास जानकारियाँ, वहीं वार्ता के सेगमेंट में सुनाएंगे आपको पूर्व प्रसारित वार्ता, वहीं दोस्तों आर्थिक परिक्रमा में देंगे आपको ढेर सारी जानकारियां, साथ ही हमेशा की तरह करंट अफेयर्स पर भी आपको अपडेट करेंगे। इन सबके साथ कार्यक्रम में गीत संगीत का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, आने वाले 30 मिनट बेहद खास होने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ यानी आपकी रेडियो दोस्त अर्पिता के साथ। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और बात करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। बचपन का अधिकार, शिक्षा और खुशियों का संसार, यह दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है ताकि समाज में बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके और बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दिशा में प्रयास किया जा सके। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनके हाथों में किताबें और सपने होने चाहिए, ना कि औजार और बोझ। दोस्तों, जब किसी बच्चे से उसके आयु के अनुसार अनुचित या खतरनाक कार्य कराया जाता है जिससे उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास प्रभावित होता है, तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। कई बच्चे गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्कूल जाने के बजाय होटलों, कारखानों, दुकानों, ईंटे भट्टों और अन्य स्थानों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कई बच्चे सड़क पर सामान बेचते हुए या भारी सामान ढोते हुए भी दिखाई देते हैं। यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि बच्चों के अधिकार का हनन है। विशेष रूप से कार्य जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जब एक बच्चा मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है तो उसके ये अधिकार उससे छिन्न हो जाते हैं। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। कई लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि बाल श्रम कानूनन अपराध है और बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बाल श्रम के दुष्परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। सबसे पहला नुकसान बच्चे की शिक्षा को होता है, दूसरा नुकसान उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और तीसरा नुकसान उनके मानसिक विकास पर पड़ता है। बाल श्रम बच्चों के सपनों को भी छीन लेता है। हर बच्चे के मन में कुछ बनने की इच्छा होती है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक तो कोई वैज्ञानिक या कलाकार, लेकिन मजदूरी का बोझ अक्सर इन सपनों को अधूरा छोड़ देता है। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार, सामाजिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है ताकि हर बच्चा विद्यालय जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा बाल श्रम को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। खतरनाक उद्योगों और कार्यों में बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित है, लेकिन केवल कानून बना देने से समस्या समाप्त नहीं होती। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक और संवेदनशील बनना होगा। जब समाज जागरूक होगा तभी बाल श्रम जैसी समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज के चर्चा से विषय से जुड़ी कुछ बातें। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत फिल्म तेजाब से अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: दोस्तों इस अंतराल के बाद बारी है डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स की, जिसमें हम आपको बताएंगे रेडियो से जुड़ी रोचक बातें। तो दोस्तों आज के डेली ट्रिविया में हमारा सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका जवाब आप हमें अभी मेल करें, हमारी मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों अब बारी है फन फैक्ट्स की। तो क्या आपको पता है दोस्तों, भारत में पहला संगठित रेडियो प्रसारण निजी कंपनी और वायरलेस क्लब द्वारा संचालित प्रायोगिक सेवाओं के रूप में शुरू हुआ था। सबसे पहला अनुसूचित मनोरंजन और समाचार प्रसारण 1923 में भारतीय प्रसारण कंपनी IBC के तहत बॉम्बे, मुंबई में कुछ समय बाद कोलकाता में भी शुरू हुआ था। दोस्तों इस फन फैक्ट्स के बाद बारी है पूर्व प्रसारित वार्ता सुनने की, जिसका विषय है विज्ञान बनाम अंधविश्वास। इसके वार्ताकार हैं रश्मि कुमारी, तो आइए सुनते हैं उन्हें।
10: जीवन के निर्माणकारी क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान निर्विवाद रूप से असाधारण है। पिछले कुछ दशकों में विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से उन्नति हुई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, मनोरंजन, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शिक्षा में विज्ञान के कारण परिवर्तन आया है।

विज्ञान दिन रात तरक्की कर अपनी ताकत सिद्ध कर दी। उसने दिखा दिया एक झटके में दुनिया खत्म कर सकता है तथा विश्व को जोड़कर एक इकाई भी बना सकता है। जहां एक और 21वीं सदी का मानव जीवन विज्ञान पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। अंधविश्वासों का प्रचलन केवल एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि विकसित कहे जाने वाले यूरोपीय देशों में भी हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि अंधविश्वास एक विचारहीन विश्वास है। अंधविश्वास का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यह है अंध प्लस विश्वास। अंध अंधा यानी कि बिना सोचे विचारे कार्य करना। जिस प्रकार एक दृष्टिहीन व्यक्ति रास्ते पर चलने के लिए एक छड़ी या दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, ठीक उसी प्रकार अंध विचारधारा का व्यक्ति भी बिना सोचे समझे कुछ विचारों के पीछे भागता है, बिना एनालिसिस किए। विश्वास किसी भी विचारधारा, व्यक्ति, पार्टी, धर्म, रीति रिवाज का अनुसरण करना विश्वास है। विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में डायन, भूत प्रेत, जादू टोना, नज़र लगना जैसे टोटका आम जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अभी हाल ही के एक सर्वे के अनुसार इन क्षेत्रों के 72% ग्रामीण स्थानीय स्तर पर सरकार की ओर से प्रदान स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद तांत्रिकों पर अधिक विश्वास करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं, जो इंसान के भय व ज्ञान की कमी को दर्शाता है। हमारे यहाँ अंधविश्वासों की वृद्धि का एक कारण वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव भी है। भारत में सूर्य ग्रहण के संबंध में जो अंधविश्वास प्रचलित है उनकी टिप्पणी करते हुए एल्डस हक्सले ने लिखा है कि भारतवासी इतनी बड़ी संख्या में एक होकर भारत को शत्रु के चंगुल से छुड़ाने के लिए एकत्र नहीं हो सकते जितना कि वे सूर्य को राहु से मुक्त कराने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी हमारे लिए बहुत ही चोट पहुंचाने वाली है, परंतु इस प्रकार के अंधविश्वासों का भी अपना सामाजिक महत्व है। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि जो भी मान्यताएं और विश्वास आज विज्ञान समर्थित प्रतीत नहीं होते, उनके मूल स्रोत का पता लगाया जाए और उनके ऊपर से अंधविश्वास का आवरण हटाया जाए। सरकार ने भी अंधविश्वास को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। जादू टोना के नाम पर प्रताड़ित होने वाले लोगों को न्याय दिलाने के लिए टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 में लागू किया गया, लेकिन अधिनियम के कायदे कानून महज किताबों तक ही सीमित हैं। कानून के लागू होने के इतने वर्षों बाद भी लोग उसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2003 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 1987 से लेकर 2003 तक 2556 महिलाओं को डायन घोषित करके मौत के घाट उतार दिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में टोनही प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों के

माध्यम से हमें ऐसी खबरें हमेशा मिलती रहती है। विडंबना यह है कि ब्रह्मांड और मानव सभ्यता का विकास का आधार होने के बावजूद

0: ने समाज में वैज्ञानिक नजरिए या चेतना के विस्तार को रोकने के लिए हर संभव क्रूरताएं की, तो दूसरी ओर धार्मिक और आस्थाओं के अंधविश्वास को मजबूत करने के लिए विज्ञान और तकनीकी का सहारा लिया और उनका भरपूर उपयोग किया। एक समय सोमनाथ के मंदिर में जो मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई थी और जिसे देखकर लोग उसे चमत्कार समझकर आस्था में डूब जाते थे, उसमें चुंबकीय सिद्धांतों की बेहतरीन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन या चुंबकीय उत्तोलन कहते हैं, जिसका अर्थ है चुंबकीय बल के सहारे हवा में तैरना। ठीक इसी तरह शायद एक घटना आप लोगों को याद होगी कि समूचे देश में यह खबर फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, जबकि उसमें भी गुरुत्व के सिद्धांत ही थे, जो किसी सीधे खड़े संगमरमर के पत्थरों से दूध भरे चम्मच का किनारा सटते ही चम्मच में मौजूद दूध का खींच जाना था। यह एक वैज्ञानिक व्याख्या है। वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से अंधविश्वास के मामलों में हालिया वर्षों में काफ़ी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का संचार इस बात से साबित होता है कि अब पीलिया का रोगी या सांप का काटा आदमी झाड़ छूक वालों के पास ना जाकर डॉक्टर के पास पहले जाता है। शिक्षा के अभाव में लोग किसी घटना के घटित होने के वैज्ञानिक कारणों से अनजान होते हैं। ऐसे में समाज की इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता को बढ़ावा देना, अन्यथा अंधविश्वास की जाल में उलझा भारत 21वीं सदी की इस दौर में विज्ञान में उन्नति करने के बजाय बहुत पीछे छूट जाएगा।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता। अब बारी है आर्थिक परिक्रमा पर आपको जानकारी देने की। आपको बता दें दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत बनी हुई है। हालिया अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। वहीं विदेशी व्यापार की बात करें तो वित्त वर्ष के दौरान भारत का कुल निर्यात उच्चतम स्तर 825.3 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। आपको बता दें दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भारत को किसी भी वैश्विक आर्थिक झटके से बचाने में मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, यह थी आर्थिक परिक्रमा से जुड़ी कुछ जानकारियां। अब बारी है एक प्यारे से गीत की। फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं यह गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद पारी है करंट अफेयर्स पर आपको अपडेट करने की। तो आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति ने REC लिमिटेड का पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में विलय को मंजूरी दे दी है। वहीं एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और प्रसिद्ध शूटिंग कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्र या ईमेल द्वारा ज़रूर सूचित करें। हमारा पता है युवाणी कार्यक्रम द्वारा आकाशवाणी भागलपुर। हमारा ईमेल एड्रेस है phair.bhagalpur@gmail.com। हमारा पिन कोड है 8120001। दोस्तों, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी विदा लेने की ओर इशारा कर रही है। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक अपनी रेडियो दोस्त अर्पिता को दे इजाज़त। धन्यवाद।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के पहले गीत के रूप में अभी आपने सुना फिल्म गदर एक प्रेम कथा का ये लोकप्रिय गीत। आवाजें थी परवीन सुल्ताना और अजय चक्रवर्ती की। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था उत्तम सिंह का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आइए सुनते हैं फिल्म देवदास का ये गीत। पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाजें हैं। इस गीत को बोल लिखे हैं पंडित बिरजू महाराज ने और इस्माइल दरबार का संगीत है।

शाम रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं औरों में कहां दम था फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है मैथिली ठाकुर ने, एमएम करीम का संगीत है, इसके बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और साथियों ने, एम तुराज और नासिर फराज ने। इसके बोल लिखे हैं और संगीत है संजय लीला भंसाली का।

संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आज संध्या आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में एक वार्ता। विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। वार्ताकार हैं योगाचार्य उमाकांत चौधरी। संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद की प्रस्तुति सुनेंगे आप। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में उस्ताद बिस्मिल्ला खान एवं साथियों से शहनाई वादन। 10:30 पर आज आप सुनेंगे आप श्रोताओं की फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता, विषय है चर्म रोग का उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश दुबे और भेंटकर्ता हैं कुसुमाकर दुबे। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस गान। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला सुनेंगे आप। इसके अंतर्गत सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में आप सुनेंगे गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बातें में एक वार्ता, विषय है RTI। वार्ताकार हैं श्री संदीप झा। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां। प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार स्वामी प्रणवानंद की प्रस्तुति। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार बासुकी प्रसाद यादव की प्रस्तुति। दिन में 11:00 आप सुनेंगे आप श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में कलाकार बलराम दास मिश्र से तबला वादन सुनेंगे आप। 1:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में गायक कलाकार विनय कुमार शुक्ल के गाय लोकगीत। 1:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक संताली कार्यक्रम जीवन झरना। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कल संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कल संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम में गायक कलाकार सचिदानंद सिंह की प्रस्तुति। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायिका मृदुला कुमारी मारतंड की प्रस्तुति। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार, प्रियदर्शन।

0: श्रोता भाई बहन का राधा के भी नमस्कार, पन्नू भाई अपनों का नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार राधा बहन, और सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है राधा बहन?
0: सब हाल चाल तो ठीक छे पन्नू भाई, लेकिन जे कखनियो खूब रौदा करी दे छे, कखनियो बरसा पड़ी जाए छे, मौसम में परिवर्तन हो रहा छे, तो थोड़ा सा एकरा से दिक्कत भी हो रहा छे, बीमार नहीं हो के खतरा बढ़ी जा
1: राधा बन। होता क्या है कि मौसम में कब परिवर्तन हो जाएगा कहना मुश्किल है, देखते हैं ना। पिछले दो तीन दिनों से लगातार कभी कभी वर्षा हो जाती है और दिन में तेज धूप भी निकल जाती है, तो ऐसे में तो दिक्कत होती ही है। लेकिन हम लोगों को तो मौसम के अनुकूल ही रहना है, जो भी गर्मी आवे और वर्षा हो, हमको तो उसके अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अपना सतर्क रहना है, और हमें अपने सारे कार्य भी करने हैं
0: जी।
1: हमें अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और किसान भाई देखते हैं अब तो अपने फसल की बुआई में भी लग गए हैं, धान का अब बुआई का सीजन भी धीरे धीरे आ गया है, तो वे खेत भी तैयारी करने लगे हैं
0: जी।
1: तो अब धीरे धीरे सारे काम जो है हो रहे हैं, और अब गर्मी की छुट्टी भी खत्म हो रही है, तो बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं
0: जी,
1: और सब कोई अपने अपने कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। कभी कभी क्या होती है राधा बहन कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना पड़ता है, करना पड़ता है। गरीबी और अशिक्षा के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। जैसे देखने को मिल जाता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वे क्या कहते हैं, कहीं कहीं छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, जिन्हें हम बाल श्रमिक कहते हैं, जिससे उनका भविष्य जो है वो बनने के बजाय बिगड़ जाता है, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। राधा बहन, बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत और मासूम और ऊर्जा से भरपूर चरण होता है
0: जी।
1: यह वह समय है जब एक बच्चे को खुले आसमान में उड़ने की आजादी, शिक्षा का अधिकार और खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जानते हैं अगर यह अवसर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, या तो उसका परिवेश वैसा है या उनका परिवार जो है वैसी स्थिति में नहीं है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा समय से उनको भोजन दे सके, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जिससे बच्चे काम करने के लिए
0: मजबूर
1: हो जाते हैं।
0: वैसे जाने छो पन्नू भाई, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा बाल मजदूर छे। ई बच्चा ईट भट्टा पर, पटाखा के फैक्ट्री में, होटल में बर्तन धोता हुआ, कूड़ा बीनता हुआ मिले छे। बाल मजदूरी के बहुते कारण छे पन्नू भाई, जना की गरीबी, अशिक्षित माए बाप, परिवार पर कर्जा, सब यही कारण से बच्चा सब बाल मजदूरी के शिकार हो जाए छे।
1: जी जी जी,
0: मना की कहला जाए कि पन्नू भाई की जना की जो माता पिता कोई कारण बस शिक्षा नहीं लिया पार ले,
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: बहुत तरह के होय छे कि उनका शिक्षा के महत्व तो ही नहीं पता छे,
1: जी, जी, जी,
0: जकरा कारण से उनका लगे छे कि स्कूल जे भेजबे ओकरा से अच्छा छे कि 2 पैसा हमरो बच्चा कमाए के ले आबे। लेकिन ये एक गलत छे, एकरा चलते की होय छे ना कि उ बच्चा के मानसिक तौर पर ओकरो अथी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाए छे, शारीरिक स्थिति खराब हो जाए छे, बचपन छिनी जाए छे। तो ये लिली ए पन्नू भाई, लेकिन एक खुशी के बात ये छे कि सरकार और समाज न ये में अपना बहुत योगदान दे रहलो छे, जना कि मिड डे मील योजना, नया सवेरा योजना और बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जी ने 1 लाख से ज्यादा बच्चा का बाल मजदूरी से छोड़ेला रहे पन्नू भाई।
1: जी जी जी, होता क्या है कि जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, उसका जो बचपन का जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा, तो उसकी तो आजादी खत्म हो जाती
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: दुनिया के करोड़ों बच्चों के लिए आज यह जो है आजादी एक दूर का सपना रह गया है। इन मासूम बच्चों के हाथों में जहां कलम और किताब की जगह उन्हें भारी औजार, ईंट भट्टे की मिट्टी, होटलों के जूठे बर्तन आ जाते हैं, तो उसको हम बाल श्रम कहते हैं
0: जी।
1: और राधावन, हम जानते हैं ना कि आज बाल श्रम उन्मूलन निषेध दिवस भी मनाया जा रहा है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि यह मानवता के माथे पर एक गहरा कलंक है जो किसी भी देश के भविष्य को अंधकार में धकेल सकता है
0: जी।
1: इस गंभीर समस्या की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए और इसे पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल 12 जून यानी आज के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है
0: जी।
1: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर प्रकाश डालना और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों को बढ़ावा देना था।
0: जी।
1: प्रत्येक वर्ष 12 जून को दुनिया भर की सरकारें, नियोक्ता, श्रमिक संगठन, नागरिक समाज और लाखों लोग मिलकर बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए एकजुट होते हैं। आज पूरे देश में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं
0: जी।
1: ताकि लोगों को बाल श्रम से क्या हानि है, बाल श्रम में बच्चों का भविष्य किस प्रकार नष्ट होता है, मतलब बाल श्रम उन्मूलन किस प्रकार हो, इस पर विशेष जागरूक किया जाता है
0: जी।
1: इस दिवस का मूल उद्देश्य केवल एक दिन का आयोजन करना नहीं है बल्कि एक दीर्घकालिक जागरूकता पैदा करना है
0: जी।
1: यह दिवस हमें याद दिलाता है कि जब तक एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहकर मजदूरी करने को मजबूर है तब तक हम खुद को एक सभ्य और प्रगतिशील समाज नहीं कर सकते।
0: आरो पन्नु भाई, बच्चा जे छे देश के भविष्य छिके
1: जी जी जी।
0: आरो देश के तरक्की की सड़क बढ़िया छे, बिल्डिंग बड़ो बड़ो छे, सब सुविधा छे, वैसा नहीं देखलो जाए छे जब तक कि वहाँ के हर बच्चा खुश नहीं छे। अपना महात्मा गांधी जी ने कहना रहे देश के भविष्य क्लासरूम में लिखलो जाए रहलो छे। अगर बच्चा क्लासरूम के जगह कारखाना में होता है तब भविष्य अंधेरा में छे।
1: जी जी जी, जी। गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा प्राथमिक कारण है और जब किसी परिवार के माता पिता अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने में असमर्थ होते हैं तो वे न चाहते हुए भी अपने बच्चे को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं
0: जी।
1: ऐसे परिवारों के लिए बच्चा एक भविष्य का संपत्ति नहीं बल्कि वर्तमान की कमाई का एक जरिया बन जाता है। तो गरीबी जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके दूर करने के लिए हमारी सरकारें और हमारा समाज लगातार प्रयासरत रहता है। और जिन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा की कमी होती है वहाँ बाल श्रम दर अधिक पाई जाती है
0: जी।
1: देखते हैं ना कि आज स्कूलों में जोर दिया जाता है घूम घूम के बच्चे टोले मोहल्ले से कि कोई बच्चा छूटा नहीं जो जिसका नामांकन स्कूल में नहीं हुआ है, इसलिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसलिए कई बार माता पिता के अशिक्षित होने के कारण भी शिक्षा के महत्व को वे समझ नहीं पाते हैं जिससे बाल श्रम की स्थिति आती है। और एक समस्या है जनसंख्या विस्फोट, जानते हैं ना, जनसंख्या विस्फोट भी बाल श्रम का एक मुख्य कारण है। सीमित संसाधन वाले परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पालन पोषण करना कठिन हो जाता है। ऐसे में बड़े बच्चे को छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। तो ये एक प्रमुख कारण था। और बाल श्रम जो है इसका खात्मा कैसे हो, इसका उन्मूलन कैसे हो, इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकारें, हमारा समाज लगातार इस पर लगा हुआ है और आशा है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग बाल श्रम अब देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा
0: जी।
1: जी, तो बाल श्रम तो खत्म तभी होगा जब हम जागरूक होंगे और किसी बच्चे से काम नहीं करवाएंगे और किसी बच्चे को काम पर भेजेंगे भी नहीं। उन्हें शिक्षा में कैसे जोड़े, उनका प्रारंभिक विकास कैसा हो, इस पर हमें ध्यान देना है। और जब विकास होगा, शिक्षा मिलेगी तो स्वतः विकास होगा और सब जगह खुशहाली भी आएगी। खुशहाली तभी आती है, खुशहाली आने के बाद हम लोग एक दूसरे पर, मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे के सुख के भी भागी बनते हैं।
0: हाँ जी।
1: तो आइए हम लोग भी एक देवी गीत सुन लेते हैं।

0: जी बहुत अच्छा की, तभी हम लोगों ने सुना राधावन।
1: जी
0: होता क्या है कि भक्ति भाव का समय जब आता है तो लोग अपने सारे कष्ट को भूल जाते हैं। अभी हम लोगों ने बाल श्रम की बात की तो देखते हैं ना कि बाल श्रम हर घर में देखने को मिल जाता है। छोटी छोटी बच्चियां भी काम करने के लिए हर घर में जाती हैं। तो
1: जी
0: क्या होता है कि महिलाएं भी आजकल काफ़ी सजग हो चुकी हैं। आज देखिएगा राधा बहन कि
1: जी
0: महिलाएं अपने बच्चियों, किसी भी बच्चियों को अपने घर में काम करने के लिए नहीं रखना चाहती हैं,
1: जी
0: और उसके क्या अधिकार होते हैं इस पर भी वे सजग रहती हैं
1: जी बिल्कुल
0: कि कोई बच्ची को कोई प्रताड़ित न करे, कोई तंग न करे, और उसको अपने घरों में या आसपास में काम नहीं करने के लिए रखे, इस
1: हाँ
0: पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
1: जी
0: तो बाल श्रम निषेध कानून में महिलाओं की भूमिका क्या है, आइए एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। वार्ताकार हैं अनिमा कुमारी।
2: श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिससे कि कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रक्रिया माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूल शिक्षा के साथ औद्योगिकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों, श्रमाधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जन विवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम बात है। मानव जीवन में बाल्यावस्था यानी बचपन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को सांसारिक जिम्मेदारियों की कोई जानकारी नहीं होती है, पर उससे श्रम करवाया जाता है। कभी कभी तो स्थिति काफी अमानवीय हो जाती है। बच्चे तनाव एवं बोझ से लद जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में गरीबी भी महत्वपूर्ण कारक है। गरीब परिवार में बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। अपने देश भारतवर्ष में भी बाल श्रम बड़े पैमाने पर होता है। उद्योग धंधे से लेकर कृषि कार्य, घरेलू सेवा में, पर्यटन, होटल, रेस्तरां इत्यादि जगहों पर हम आसानी से बाल श्रम देख सकते हैं। बाल श्रम में लड़के एवं लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। यहाँ लड़कियों की स्थिति काफी दयनीय होती है एवं उन्हें भावनात्मक चोट भी पहुंचती है। बाल श्रम बच्चों के बुनियादी अधिकारों पर हमला है। बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से उम्र से पहले ही परिपक्व भी हो जाते हैं।

बच्चों पर रसायन, सूर्य, प्रदूषण और गर्मी आदि दुर्घटना का प्रभाव पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाल श्रमिकों की

0: अधिनियम 1952 अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक वातावरण में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 21 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 बच्चों को एक स्वस्थ सुविधापूर्ण स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था करता है। घरेलू कार्य में लगे बाल श्रम के मामले में सरकार ने विशेष सख्ती बरती है एवं प्रतिबंध भी लगाया है क्योंकि इनमें बालिकाएं ज्यादा संलग्न है। सरकार की ओर से विशेष परिस्थितियों में बच्चों की मदद करने के लिए एक विशेष सेल की भी व्यवस्था की गई है। बाल श्रम निषेध कानून होने के बावजूद भी बाल श्रम थम नहीं रहा है। हमारी सोच इतनी विस्तृत नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। महिलाओं एवं बच्चों के बीच एक संवेदनापूर्ण भावना होती है। महिलाएं बच्चों की दुर्दशा देख नहीं पाती हैं। महिलाओं की जागरूकता से बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है। महिलाएं घर परिवार से लेकर गली गांव चौक चौराहों हर ओर से आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं अपने परिवार के बच्चों के समुचित विकास के लिए प्रयासरत हैं। वे संघ एवं समुदाय बनाकर गरीब बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। हमारे गली में बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं बच्चों को अपने खर्च से शिक्षित कर रही हैं। गरीबी में पल रहे बच्चों को शिक्षित करना भी एक जिम्मेवारी का काम है। समाज में महिलाओं को यह भी देखना चाहिए कि यदि कहीं बाल श्रम लिया जा रहा है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दे एवं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कराए ताकि इस पर रोक लगे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हर महिला का यह फर्ज बनता है कि वह बाल श्रम को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास करे एवं बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करे। साथ ही गरीबी में पल रहे बच्चों के माँ बाप को भी समझाए कि यह उचित नहीं है कि बच्चों से श्रम न करवाकर उन्हें शिक्षित करे। हर महिला की यह सोच बननी चाहिए कि वह अपने प्रयास से जहाँ तक हो सके एक गरीब बच्चे को शिक्षित करे एवं उन्हें अपने पैर पर खड़ा होने में सहायता करे।
1: महासागर जी, बहुत अच्छी जानकारी भी हम लोगों को मिली और आइए अब सुनते हैं कुछ संदेशों को।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
5: Nexa.
1: जी एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है।

0: और राधाबन,
1: जी
0: हम लोग लगातार जो है पूजा पाठ प्रार्थना में लगे रहते हैं ताकि सबों का, क्या कहते हैं, भगवान सबका कल्याण करे।
1: कल्याण करे। हाँ
0: तो वैसे कल्याणकारी भगवान का हम लोग एक शिव भजन सुन लेते हैं।
1: ठीक।

0: बहुत अच्छा गीत अभी हम लोगों ने सुना शिव भजन। हाँ। और अब थोड़ी चर्चा राधा बहन हम लोग कर लेते हैं मौसम के विभाग, मौसम के बारे में विभाग से जो हम लोग को जानकारी मिली है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 17 जून के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। 14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस दौरान रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। इस दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। और मौसम चेतावनियों में जो दी गई है उसमें जिले में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसानों को खेत के कार्य स्थगित करने एवं फसल व पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। और सामान्य सलाह में आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर किसान भाई ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें, ये तो साधारण प्रायतः हर जगह कहा ही जाता है। और फसल विशिष्ट सलाह जो दी गई उसमें लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा शब 1, राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 एवं राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी स्थापित किसान भाई कर सकते हैं। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार आप रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी किसान भाई तैयार करें। बीजों की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। और खरीफ मक्का की बुआई किसान भाई करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। और बागवानी के लिए जो सलाह दी गई है राधावन उसमें खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी किसान भाई शुरू कर दें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर का खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N053 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार कर लें और बीज की दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। तो ये तो प्रमुख सलाह किसान भाइयों को दी गई थी। आशा है किसान भाई इस सलाह को जरूर अमल करेंगे। और राधावन आइए हम लोग फिर से सुनते हैं एक लोक भजन।
1: ठीक।

0: Feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जी, बहुत अच्छा गीत हम लोगों ने सुना था इसके पहले। और एक बार सभी किसान भाइयों का स्वागत है। होता क्या है राधा बहन की कि जब हमारे किसान भाई हैं उनको कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है
5: जी।
4: जब पहले तो वो खेत तैयार करते हैं उस समय से उन्हें एक क्या कहते हैं एक कंपोस्ट तैयार करना होता है। कंपोस्ट तैयार करने के बाद वो अपने पौधे तैयार करते हैं। पौधे लगाने के पहले उनको बीज जो है उन्हें उपचारित करना होता है। पहले तो उन्नत प्रभेद का बीज चाहिए, बीज को फिर उपचारित करना है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है
5: जी।
4: और अगर कीट का प्रबंधन वो समय से नहीं करते हैं तो उन्हें काफी नुकसान हो जाता है
5: जी।
4: तो उसमें भी जानते हैं राधा बहन, उसमें कई एक कीट होते हैं जो हमारे फसल के लिए लाभदायक भी होते हैं लेकिन ज्यादातर हानिकारक भी होते हैं। लेकिन हम अपने उस कीट को पहचानेंगे कैसे कि कौन कीट हमारे शत्रु हैं, कौन कीट हमारे मित्र होते हैं? तो किसान भाई काफी परेशान हो जाते हैं उसमें
5: जी।
4: तो कीट का प्रबंधन बहुत एक कठिन, ये क्या कहते हैं, मतलब दिक्कत
5: भी,
4: हाँ, समस्या होती है
5: जी।
4: किसानों को ये कीट प्राकृतिक रूप से शत्रु कीटों, झल्लियों, अंडों, खास करके जो है इसमें परागण क्रिया में जो है लग दिक्कत देते हैं
5: जी।
4: किसानों के जो शत्रु कीट हैं वो फसलों को चबाकर रस चूसकर या वायरस फैलाकर बर्बाद कर देते हैं। इसमें से कुछ कीट होते हैं जिसे हम माहू तेला कहते हैं, या पत्तियों और तनों से रस चूसता है जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसमें कुछ कीट सफेद मक्खी होते हैं, यह पौधों का रस चूसती है
5: जी।
4: और एक होता है तना छेदक, यह झल्ली पौधों के तनों के अंदर घुसकर उन्हें अंदर से खोखला भी कर
5: जी,
4: देते हैं
5: जी।
4: और दीमक होता है, यह पौधे की जड़ों को भी खा जाते हैं। तो शत्रु और मित्र कीटों की पहचान कैसे करें, आइए इस संबंध में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं एक प्रसारित वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल।
5: ठीक।
6: यह सोच लिया जाता है कि ये अत्यंत हानिकारक हैं, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। हानिकारक होने के साथ साथ कुछ कीटों का एक ऐसा वर्ग है जो मनुष्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। कीटों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा गया है, हानिकारक तथा लाभदायक। हानिकारक कीट हमारी फसलों, गोदामों में भरे अनाज, घरेलू पशुओं तथा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि लाभदायक कीट हमारी सहायता करने के साथ साथ कुछ उत्पादन का भी कार्य करते हैं। उत्पादक कीटों में मधुमक्खियाँ, रेशम कीट एवं लाख कीट प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ कीट मनुष्य जाति के लिए काफ़ी सहायक भी सिद्ध हुए हैं। इस वर्ग में शिकारी कीट, परजीवी कीट, परागणकर्ता कीट एवं खरपतवार नाशी कीट शामिल हैं। आज मैं किसान भाइयों को हमारी फसलों से संबंधित मित्र एवं शत्रु कीट की पहचान एवं प्रबंधन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी होनी चाहिए कि फसलों पर 2 प्रकार के कीट रहते हैं, एक वो जो हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं तथा दूसरे वो जो फसलों को बर्बाद करने वाले कीटों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिन्हें हम मित्र कीट कहते हैं। मित्र कीटों को शिकारी कीटों एवं परजीवी कीटों की अहम भूमिका है। शिकारी कीटों में परभक्षी कीट आते हैं तथा ये कीट अपने शिकार के शरीर की तुलना में बड़े होते हैं तथा सीधे शत्रु कीट को खाकर नष्ट कर देते हैं। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीट के शिशु एवं वयस्क अवस्थाओं का शिकार करते हैं। शिकारी कीटों में लेडी बर्ड बीटल, ग्राउंड बीटल, प्रेइंग मेंटिस, ग्रीन लेस विंग, सिरफिड मक्खी, मिरिड बग, ड्रैगन तथा डैमसल फ्लाई प्रमुख है। लेडी बर्ड बीटल सरसों, धान, गेहूं इत्यादि फसलों में मुख्यतः देखने को मिलता है। इस मित्र कीट के वयस्क की पीठ नारंगी, लाल, पीली या काली होती है, जिस पर प्राय काले धब्बे पाए जाते हैं। इनके शिशुओं का शरीर लंबा तथा चपटा होता है, जिस पर स्पाइन्स पाए जाते हैं। यह कीट हमारी फसलों में लगने वाले माहू, स्केल कीट, मिलीबग एवं माइट को खाते हैं। ग्राउंड बीटल एक अन्य मित्र कीट है जो कि भूमिगत रहता है। इस कीट के वयस्क चमकीले काले या गहरे लाल रंग के होते हैं तथा इनकी लंबी टांगे होती हैं जो कि इन्हें तेज दौड़ने में सहायता करती हैं। शिशुओं का शरीर लंबा, चपटा तथा गहरे काले रंग का होता है। यह मित्र कीट हमारी सब्जियों, खाद्य फसलों तथा लोन में लगने वाले भूमिगत शत्रु कीटों को खाता है। प्रेइंग मेंटिस मित्र कीट का शरीर लंबा, हरे, मटमैले या भूरे रंग का होता है। इनका सिर त्रिभुजाकार तथा स्वतंत्र रूप से घूमने वाला होता है। वयस्क तथा शिशु के शरीर में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। इनके आगे वाले एक जो

जोड़ी पैर विशेष प्रकार से मुड़े रहते हैं तथा इन पर कांटे पाए जाते हैं जो कि शिकार पकड़ने में मददगार सिद्ध होते हैं। यह मित्र कीट हमारी सब्जियों, धान, गन्ना इत्यादि फसलों में लगने वाले क्रिकेट, ग्रास होपर, मौत तथा मक्खियों को अपना शिकार बनाते हैं। ड्रैगन एवं डेमसल फ्लाई हमारे मित्र कीटों में आते हैं। इनमें दो जोड़ी पारदर्शी पंख पाए जाते हैं तथा इनका शरीर लंबा एवं पतला होता है। ये मित्र कीट पानी भरी जगहों पर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। ये मित्र कीट मच्छरों के अलावा अन्य जलीय शत्रु कीटों को खाते हैं। ग्रीन लेस विंग मित्र कीट के पंखों का रंग हरा होता है जिनमें जाली नुमा संरचना दिखाई पड़ती है। इसके शिशुओं का शरीर पीछे की तरफ से पतला होता है जिस पर लंबे बाल पाए जाते हैं। इस मित्र कीट के शिशु नाजुक शरीर वाले शत्रु कीट जैसे माहू, मिलीबग, सफ़ेद मक्खी तथा अंडों को खाते हैं। यह मित्र कीट सरसों, गेहूं इत्यादि फसलों में देखने को मिलता है। सिरफिड मक्खी को फूल मक्खी तथा हावर फ्लाई भी कहा जाता है तथा यह एक मित्र कीट है। इसके वयस्क मधुमक्खी के समान दिखाई पड़ते हैं परंतु इनके उदर पर काली, भूरी या पीली पट्टियां पाई जाती हैं। इनके शिशु 1/4 इंच लंबे, बिना टांग वाले, झुर्रीदार, हरे या भूरे रंग के होते हैं तथा सरसों की फसल में ये प्राय दिखाई देते हैं। यह मित्र कीट माहू, स्केल कीट एवं थ्रिप्स का शिकार करते हैं। मिरिड बग मित्र कीट के वयस्क के पंखों पर हरा एवं काला दाग पाया जाता है परंतु इसके शिशु हरे रंग के होते हैं। यह मित्र कीट हमारी फसलों में लगने वाले फुदका कीट को खाता है। शिकारी कीटों के अलावा कुछ अन्य परभक्षी मकड़ियां एवं माइट्स भी हमारे शत्रु कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित रखने में हमारी मदद करती हैं। ये मकड़ियां गन्ना, धान, बाजरा इत्यादि फसलों में लगने वाले कीटों को अपना शिकार बनाती हैं। शिकारी कीटों के अलावा परजीवी कीट भी हमारे मित्र कीट होते हैं तथा ये शिकार के शरीर की तुलना में छोटे होते हैं। ये अपने जीवन चक्र का कुछ भाग शत्रु कीट पर परजीवी बनकर व्यतीत करते हैं। ये अपने शिकार को पूर्णतया नष्ट न करके उससे धीरे धीरे पोषण लेते रहते हैं तथा अंत में नष्ट कर देते हैं। परजीवी मित्र कीट अत्यंत छोटे होने के कारण प्राय दिखाई नहीं पड़ते। परजीवी कीट काफ़ी विशिष्ट स्वभाव के होते हैं तथा कुछ निर्धारित शत्रुओं की कुछ विशेष अवस्थाओं को अपना शिकार बनाते हैं। परजीवी मित्र कीट शत्रु कीट की विभिन्न अवस्थाओं जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क अवस्थाओं के समय अपने अंडे शत्रु कीट के शरीर में देते हैं। इन अंडों से परजीवी कीट निकलकर शत्रु कीट के शरीर को धीरे धीरे खाते रहते हैं तथा अपना विकास पूर्ण होने तक शत्रु कीट को नष्ट कर देते हैं। परजीवी मित्र कीटों में ट्राइकोग्रामा, ब्रैकोन, एपेंटेलिस, प्लेटिगेस्टर, कैम्पोलिटिस, टेट्राइस्टाइकस इत्यादि आते हैं। इनमें ट्राइकोग्रामा तथा टेट्राइस्टाइकस अंडा अवस्था के परजीवी हैं जो कि शत्रु कीट के अंडों के अंदर अपने अंडे देते हैं तथा शत्रु कीट को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर देते हैं। ये कीट हमारी फसलों में लगने वाली तना छेदक सुंडियों को नियंत्रित करते हैं जबकि ब्रैकोन, एपेंटेलिस, प्लेटिगेस्टर तथा कैम्पोलिटिस लार्वा अवस्था में शत्रु कीट के शरीर में अंडे देकर अपना जीवन पूर्ण करते हुए इन्हें नष्ट कर देते हैं। हमारी फसलों में लगने वाले शत्रु कीट से किसान भाई काफ़ी वाकिफ हैं क्योंकि ये शत्रु कीट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के किसी न किसी भाग को हानि पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से शत्रु कीट हमारी फसलों की जड़ें, तने, पत्तियां, फूल एवं फल को सीधे हानि पहुंचाते हैं तथा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु कीट हमारी

0: फसलों में विभिन्न बीमारियां भी फैलाते हैं तथा इसमें माहू तथा होपर्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसान भाइयों को मित्र एवं शत्रु कीट की सही पहचान होना परम आवश्यक माना गया है। फसलों में मित्र कीट की संख्या पर्याप्त होने पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक हमारे मित्र कीटों को भी मारते हैं तथा इनके नष्ट हो जाने पर बचे हुए शत्रु कीट हमारी फसलों को और हानि पहुंचाते हैं। अतः यह जरूरी है कि फसलों को शत्रु कीट से बचाने हेतु एकाएक विषैली कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें तथा केवल आवश्यकता अनुसार सही मात्रा में उपयुक्त कीटनाशक का ही प्रयोग करें। इसके अलावा मित्र कीटों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए कुछ फूल वाले पौधों को फसलों के साथ लगाना चाहिए, ताकि परजीवी कीटों के वयस्क को पराग एवं पुष्परस मिलता रहे। मित्र कीटों की सहायता से शत्रु कीटों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को जैविक नियंत्रण कहते हैं तथा इसके लिए कुछ जैविक मित्र कीटों को बाहर से लाकर फसलों में छोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर धान तथा गन्ने की फसल में ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसमें लगने वाले तना भेदक कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और किसान भाई अगर अपने ये मित्र कीट और शत्रु कीट की पहचान कर लेंगे तो उन्हें जो नुकसान होता है, नुकसान होने से वे बच सकेंगे और जहां लाभ मिलना होगा उससे वे लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर अनिल कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों से तो ये भी कहेंगे, वे अपने पशुओं की भी देखभाल समय से करें। अगर पशु की देखभाल समय से नहीं करेंगे तो उन्हें हानि होगी। उन्हें अभी जो है गलघोंटू व लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं और पशुओं में टीकाकरण अवश्य करा लें। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। तो ये प्रमुख जानकारी थी। आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सबको पन्नू का नमस्कार
2: और सभ्य का राधा के भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक बिक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड टी20

0: लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। CACP के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।
1: झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना, और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा किसानों के हित में अपना पॉलिसी MSP में निर्धारण किया जाए, ये प्रयास हम लोग जरूर किया है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की एक सड़क योजना को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
2: नगर निगम के द्वारा एक योजना की स्वीकृति दी गई और योजना का नाम रखा गया डब्लू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण। मेरी आपत्ति इस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो उसका नाम योजना से जोड़ा जाए यह कदापि उचित नहीं हो सकता।
0: अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को नए स्वरूप में अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में जनगणना कार्य मतदाता मैपिंग और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 13 और 14 जून को मतदाता मैपिंग के लिए आयोजित विशेष शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा सभी मतदान केंद्रों पर BLO की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के तहत कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड रखा गया है। माय भारत रांची द्वारा सहयोगी संस्था प्रोजेक्ट पॉइंट ओडिशा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा पेशेवर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जामताड़ा जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों की कृषि लागत कम हुई है और उन्हें समय पर खेती करने में सहायता मिल रही है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि है जो जिले में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी खरीफ में आप देखिए तो उनको खाद बीज इनपुट खरीदने के लिए उससे बहुत मदद मिलती है। राज्य सरकार की भी योजना में आप देखिए मिलेट मिशन है, के अलावा बीज उत्पादन में भी सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से 100% सब्सिडी पे बीज भी अभी दिए जाने हैं। उनकी आय दुगुनी से भी ज्यादा हो इसके लिए जिला कृषि कार्यालय प्रयत्नशील है।
0: गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने रिक्त पारंपरिक ग्राम प्रधान पदों को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार शीघ्र भरने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव में महिला किसानों और आम उत्पादकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कहा कि मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसान आम बागवानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
2: प्रोडक्शन तो है लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती। उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयुक्त के द्वारा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें एक ओर व्यापारी वर्ग है दूसरी ओर उत्पादक गण है। सामंजस्य को बनाने के लिए उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज झारखंड में प्रवेश कर लिया है और जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में धनबाद होते हुए आगे बढ़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के और अधिक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई है।
3: मानसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है। झारखंड में 12 जून को मानसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मानसून पहुंचता है। पूर्वी भाग है वहां पे 12 जून को अपने सही समय में पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा।
0: झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की। कप्तान उत्कर्ष सिंह ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक विक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: क्या आप खेती में
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। वार्ताकार हैं योगाचार्य उमाकांत चौधरी।
6: स्वस्थ जीवन के लिए योग। योग तन मन को स्वस्थ रखने की एक वैज्ञानिक विद्या है जो प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की

अमूल्य देन है। योगाभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य प्रदान करता है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का एक भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने की क्षमता यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग सकारात्मक सोच का प्रबल समर्थक है। मानसिक ग्रंथियों एवं घृणा, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि मनोविकारों से युक्त व्यक्ति भी योगाभ्यास करे तो उसके अंदर प्रेम, दया, मुदिता और करुणा का संचार कर देता है। योगाभ्यासी का मुख मुद्रा फूल की तरह खिला और चेहरा ओजपूर्ण एवं तेजस्वी रहता है। योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है। संस्कृत वांग्मय के अनुसार योग शब्द युज धातु में ज्ञ प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है, जो पाणिनि व्याकरण के अनुसार तीन अर्थों में पाया जाता है। पहला युज समाधौ यानी समाधि, दूसरा युजिर योग यानी जोड़, तीसरा युज संयम ने अर्थात सामंजस्य। यौगिक ग्रंथों के अनुसार योग का अभ्यास व्यक्तिगत चैतन्यता को सार्वभौमिक चैतन्यता के साथ एकाकार कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित सब कुछ परमाणु की एक अभिव्यक्ति है, जिसने योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया उसे योगी कहा जाता है। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त करता है, जिसे मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। योगाभ्यास का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख से छुटकारा पाना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव प्राप्त कर सके। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और उसके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पतंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध प्रकार से व्यवस्थित किया है। प्रतिष्ठित योग आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में फैला है। संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योगाभ्यास से लाभान्वित हो रहे हैं। योग दिन प्रतिदिन विकसित और समृद्ध होता जा रहा है। योग के आधारभूत तथ्य। योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। इसे व्यापक रूप में चार वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग में हम भावना का प्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग के सभी प्राचीन व्याख्याओं में इस विषय पर अधिक बल दिया जाता है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योगिक अभ्यास। योग साधनाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। यम के पांच भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम का लक्ष्य है अपने ऊपर नियंत्रण लाना यानी सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा है नियम, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, संतोष,

तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम है। इसे हम सोशल डिसिप्लिन के रूप में जानते हैं। नियम का लक्ष्य है अपना संतुलन प्रकृति एवं पर्यावरण से स्थापित करना। आसन का लक्ष्य है शरीर को निरोग, सुगठित, सुदृढ़, लचीला और स्फूर्तिवान बनाना, ताकि देर तक बैठकर साधना किया जा सके। प्राणायाम। प्राणायाम श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभ्यास है। यह श्वसन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं उसके पश्चात मन के प्रति सजगता उत्पन्न करने तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करता है। प्राणायाम के अभ्यास क्रम में नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के अंदर लेना पूरक कहा जाता है। नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के अंदर रोकने की अवस्था कुंभक तथा नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के बाहर छोड़ने को रेचक कहा जाता है। प्रत्याहार के अभ्यास से व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विषय का त्याग कर अपने मन तथा चैतन्य केंद्र के एकीकरण का प्रयास करता है। धारणा का अभ्यास मनोयोग के व्यापक आधार क्षेत्र के एकीकरण का प्रयास करना है। यह एकीकरण बाद में ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। इसी ध्यान में चेतन एवं एकीकरण रहने पर समाधि घटित होती है। बंध एवं मुद्रा ऐसे योग अभ्यास हैं जो प्राणायाम के सहायक हैं। षटकर्म शरीर एवं मन के शोधन का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभ्यास है, जो शरीर में एकत्रित विष यानी विजातीय द्रव को हटाने में सहायता प्रदान करता है। युक्ताहार स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुव्यवस्थित एवं नियमित भोजन का संवर्धन करता है। प्राणायाम से लाभ। प्राणायाम से अनेक लाभ हैं, यथा रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन। अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड संपूर्ण शरीर से हृदय में पहुंचता है और हृदय इसे शुद्धिकरण हेतु फेफड़े लंग्स में भेजता है। प्राणायाम में चूंकि प्राणवायु फेफड़े में अधिक मात्रा में पूरक के माध्यम से आता है, इसलिए अशुद्ध रक्त प्राणवायु में व्याप्त ऑक्सीजन से युक्त होकर शुद्ध हो जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वह श्वास के ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे शरीर की शक्ति है। इस प्रकार रक्त प्रवाह के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। प्राणायाम मानसिक थकान को दूर कर मानसिक शांति प्रदान करता है। प्राणायाम सिरदर्द, माइग्रेन, हाई बीपी एंड लो बीपी, पक्षाघात तथा पार्किंसंस जैसे असाध्य बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। मानसिक बीमारियां यथा अवसाद, डिप्रेशन, निराशा, अनिद्रा तथा स्नायु तंत्र के समस्त बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक है। प्राणायाम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, मोटापा, गठिया आदि असाध्य बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। आधुनिक मेडिकल साइंस का दावा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैंसर सेल जिंदा नहीं रहता, इस प्रकार कैंसर के कंट्रोल में भी प्राणायाम सहायक है। ध्यान से लाभ। प्रातःकाल ब्रह्मवेला में किया गया ध्यान हमें अनेक लाभ देता है, जिसमें प्रमुख हैं। ध्यान शरीर और मन को तनाव रहित करता है। ध्यान एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान हाई बीपी, एंजाइना पेन, मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, अवसाद, थकान, चिंता, भय, परेशानी आदि को दूर कर ध्यान योग मन को प्रसन्नता से भर देता है। ध्यान योग मासिक धर्म को नियमित एवं नियंत्रित करता है। सावधानियां। योगाभ्यास कर्म में इन बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला, अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास खाली पेट अथवा रसाहार लेकर करना चाहिए। तीसरा, योगाभ्यास हवादार एवं स्वच्छ वातावरण में शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। चौथा, योगाभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत ही करना चाहिए। पांचवा, थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। छठा, गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय

योग करने से पहले योग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य कर लेनी चाहिए। सातवां, अभ्यास सत्र ईश्वर प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहिए।

0: उपाय को हम योगाभ्यास में जोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पैंक्रियास के टेल पोर्शन से एक द्रव निकलता है, इसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की क्वालिटी या क्वांटिटी में कम निकले तो डायबिटीज मिलाइटस हो जाता है। मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैंक्रियास को एक्टिवेट करनी चाहिए, जिसमें सहायक है हमारा कपालभाति। कपालभाति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पैंक्रियास पर एक मधुर संगीतमय ढंग से प्रहार करते हैं और उसका मसाज होता है, जिससे हमारा पैंक्रियास एक्टिवेटेड होता है। इसके साथ वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्र आसन आदि इस पैंक्रियास को एक्टिवेट करने में सहायता करता है। दूसरी बीमारी जो तीव्र गति से फैल रही है, खास करके बच्चों को हम देखें, तो वह है मोटापा। मोटापा क्यों होता है? जब हम भोजन बहुत कैलोरी का करते हैं और उसका कंजम्पशन नहीं हो पाता है तो मोटापा बढ़ता चला जाता है। थायराइड भी इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन मोटापा को कंट्रोल हम योग के माध्यम से, यदि हम नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, कपालभाति करें और कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें, तो इससे हमारे मोटापे पर अवश्य नियंत्रण होता है। आहार भी इसमें बहुत बड़ा एक तत्व है। आहार भी हमें शुद्ध ऐसा ढंग से करना चाहिए जो सुपाच्य हो और शरीर को लग जाए। इसके अलावा थायराइड को अफेक्टेड करने के लिए हमारे पास योग में उज्जायी प्राणायाम है। उज्जायी प्राणायाम के से हम अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेटेड रख सकते हैं, जो मोटापा को कंट्रोल करता है। तीसरी बीमारी जो प्रदूषण से बढ़ रही है इस पूरे शहरी क्षेत्र में खासकर, वह है अस्थमा। अस्थमा हमारे लंग्स में जब पैसे संकीर्ण हो जाते हैं और गंदी हवा जब उसमें भर जाता है, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है और उस गंदी हवा को, प्रदूषित वायु को हम नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी होती है। इसमें लिए प्राणायाम बहुत बड़ा सहायक है। सबसे पहले अस्थमा के जो हमारे लंग्स में जो गंदी हवा है, प्रदूषित हवा है, उसे हम कैसे बाहर निकालें, इसके लिए जो एक्सलेशन है उसको बढ़ाना होता है। कपालभाति के दरमियान भी हम देखते हैं कि हम एक्सलेशन पे, यानी कि श्वास को बाहर शरीर से, फेफड़े से निकालने में हम ताकत लगाते हैं, तो गंदी हवा हमारे फेफड़े से बाहर आती है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। श्रोताओं, कार्यक्रम ने में आज ने आपने सुना एक पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था स्वस्थ जीवन के लिए योग। वार्ताकार थे योगाचार्य उमाकांत चौधरी। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी

सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए
2: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है बेगूसराय जिले के पखट्टा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम 2 लोगों की गिरफ्तारी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त और मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश अब समाचार विस्तार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है जो जनता के विश्वास का प्रमाण है श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे
3: आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं

0: श्री चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना भी पूरा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता और आवंटन मिला। श्री चौधरी ने बताया कि राजगीर और मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 5,00,000 करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है।
1: बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का एक साल पूरा होगा तो लगभग 5,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम, इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे
0: हैं। राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार नियोजित तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक विक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने के चलते हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलाड़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार तथा रतवारा थानाध्यक्ष साजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी पटना से वापस लौट रहे थे।
1: देर रात में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स मधेपुरा पुलिस के सर्विंग SHOs और एक जो ड्राइवर थे उस गाड़ी से लौट रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे। उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। गाड़ी पटना से होते ही मतलब मधेपुरा की तरफ जा रही है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बेगूसराय में 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश नाकाम हुई है। तकनीकी शाखा और पकड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा में सेटिंग कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छापेमारी कर आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश रोशन और दुलार चंद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस लगा चप्पल, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, चार्जर तथा कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इससे पहले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
2: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो हैं वो स्कॉलर हैं, कुछ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं, इन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में कई अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर

0: सारा रूप जताया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले में भारी बारिश हुई है। जिले के प्राणपुर में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: राजधानी पटना में बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल का चौथा वार्षिक अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। दो दिवसीय इस अधिवेशन में देश विदेश के कई जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत महोरही ओवरब्रिज के पास से उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से 1,35,00,000 रुपए मूल्य की शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत। 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 2 लोगों की गिरफ्तारी, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले में चालू खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए विभाग और किसानों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में इस वर्ष 1,72,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को धान की खेती के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि धान का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने कहा कि धान की खेती के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय राजनीति के समकालीन इतिहास में पिछले 12 वर्षों को ऐसे दौर के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसमें सत्ता, सुशासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुधार और तकनीकी परिवर्तन के अनेक अध्याय एक साथ लिखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक बने रहने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर एनडीए के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक प्रमोद कुमार सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह, प्रकाश चंद्रा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कृष्ण बल्लभ सिंह बबुआ जी, अनिल कुमार सिंह और सतीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत पूरा भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तथा देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनटीपीसी की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सीआईएसएफ के आईजी प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख एलके बेहरा तथा स्वरा महिला क्लब की अध्यक्ष आरती बेहरा ने किया। इस अभियान के तहत चयनित 61 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय रेल बिजली कंपनी की ओर से बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत 40 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक प्रेरक प्रयास साबित होगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों श्री चंद्रवंशी औरंगाबाद जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचा रहे हैं ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को भी इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 9 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन बनाने, जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीघ्र कराने तथा उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी लाकर किसानों को सिंचाई का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के सचिवों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं रफीगंज से जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य योजनाओं को तेजी से लागू करने का अनुरोध किया। औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ पर बटाने नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन बंद है। इससे आम यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक आवागमन के लिए डायवर्सन निर्माण की दिशा में पहल की है ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। औरंगाबाद जिले में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रात्रि गश्त तथा वाहन जांच अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औरंगाबाद की जिला पार्षद नीतू सिंह तथा कुटुंबा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासन, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
0: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए एक भजन।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को लिया था हमने फिल्म बरसात से। इस गीत को गाया था सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। अनवर सागर ने इसके बोल लिखे थे, संगीत था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
0: श्रोताओं, आप कार्यक्रम में सुनिए निदा फाजली का लिखा हुआ गीत फिल्म चाहत से। इस गीत को गाया है विनोद राठौड़ और अलका याग्निक ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़

0: से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में सुनिए फिल्म दिल से का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। संगीत है AR रहमान का और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में फिल्म गुरु से ये लोकप्रिय गीत सुनिए। एआर रहमान, चिन्मयी श्रीपद और साथियों की आवाज़ में इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत है एआर रहमान का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म कृष का ये गीत। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं। नासिर फराज ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है राजेश रोशन का।

0: यून सुखयोल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब

0: स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
6: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
7: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
6: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
8: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army and Disaster Response Team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
9: We are very

0: भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अकवामे मुत्तहदा के दो इदारों को 30 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 102.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदलू।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शतदल के इस अंक के साथ। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं है बल्कि ये मानव जीवन, समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। ये ना केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि ज्ञान, संवेदनशीलता और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। साहित्य हमें जीवन की गहराइयों को समझने और अपने भावों को व्यक्त करने में मदद करता है। साहित्य वह कला है जिसमें भाषा के माध्यम से मानव जीवन, समाज, संस्कृति और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। साहित्य समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने का कार्य करता है। ये सामाजिक सुधार और बदलाव का महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य भाषा को समृद्ध बनाता है और हमें अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कला सिखाता है। तो श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता, समालोचना की कसौटी पर डॉक्टर नामवर सिंह। वार्ताकार हैं भीष्म मोहन झा।
1: डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे। उनकी गिनती हिंदी साहित्य जगत के बड़े समालोचकों में थी। उन्हें कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लंबे अरसे तक अध्यापन का कार्य किए। इसके पूर्व वे सागर और जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाए। जनयुग और आलोचना नाम की दो हिंदी पत्रिकाओं के भी संपादक रहे। उनका जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के जियनपुर, जो कि अब चंदौल के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि ली थी। लगभग 65 से भी अधिक वर्षों तक साहित्य के क्षेत्र में कार्य किए। पिछले 30-35 वर्षों से वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर व्याख्यान भी दिए। जब वे गांव में थे तो ब्रज भाषा में प्राय श्रृंगारिक कविताएं लिखा करते थे। बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू की। हिंदी का गद्य पर्व मनाते हुए प्रेमचंद और भारतीय समाज पर भी लेखनी चलाने में हिचके नहीं। सन 1940 ईस्वी में उन्होंने नवयुवक साहित्यिक संघ नामक साहित्यिक संस्था अपने सहयोगी पारसनाथ मिश्र सेवक के साथ निर्मित की थी, जिसमें हर सप्ताह एक साहित्यिक गोष्ठी होती थी। डॉक्टर नामवर सिंह की काव्य प्रतिभा के निर्माण में इस संस्था का भी योगदान रहा था। उनके स्कूल के छात्र संघ से एक मासिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था क्षत्रिय मित्र। इसमें उनकी पहली कविता दिवाली, दूसरी कविता थी सुमन रो मत छेड़ गाना। इतना ही नहीं, वे प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठी में कविता पाठ कर साहित्यकारों के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। वे आधुनिक साहित्य से काफी प्रभावित होते रहते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका एवं दूसरी इला चंद्र जोशी द्वारा अनुदित गोरकी की आवारा की डायरी जैसे पुस्तकों को पढ़कर काफी प्रभावित हुए। डॉक्टर नामवर सिंह की साहित्य एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में काशी की परंपरा और परिवेश की अहम भूमिका थी। काशी उनके संस्कार में रचा बसा था, लेकिन उनके निर्माण में आवाजापुर की साहित्यिक मंडली के बाद बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे सदा इस सत्य को स्वीकार करते थे कि कोई भी रचना अपनी आलोचना को स्वयं खोज लेती है। वे कविता की सार्थकता, उसके प्रयोजन और उसकी स्वायत्तता जैसे सवालों को लेकर उलझन को समाप्त कर साहित्यकारों के बीच परंपरावादी विचारधारा को दूर करते हुए एक दूसरी परंपरा की खोज किए। भाषा की परंपराओं का साहित्यिक मंथन किए जिससे केवल अमृत बाहर आया। कविता के नए प्रतिमानों पर दृढ़ रहना, उसको नए तरीके से देखना और उसकी सार्थक पात्रता पर डटे रहना उनकी विशेषता थी। मुक्ति बोध से ही साहित्यिक धारणाएं बनी और समालोचकों की दृष्टि में प्रथम स्थान पाने में सफल रहे। वे स्वयं लिखे हैं कि जिस लेखक से आपके विचारों का मेल न हो उसका विरोध आप बेशक कर लीजिए, लेकिन उसका साहित्यिक महत्व यदि कुछ है तो उसे स्वीकार कीजिए। कहाँ मिलेगी ऐसी उदारता जब हिंदी समाज में आजकल या तो भीरू प्रोपगेंडा या लगभग निर्जीव कर दी गई विचारधारा के बीच लोकालोकी चल रही है। वे लिखते हैं कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य की तरह हिंदी कविता या साहित्य को नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसमें आलोचना का सर्वदा अभाव रहा है। वे आलोचना और संवाद दोनों को जीवंत रखने के पक्षधर रहे थे। वे कभी भी श्रेष्ठ विद्वानों के सिद्धांतों में दोष दर्शन नहीं किए अपितु उनका परिष्कार मात्र किए हैं। यह सत्य है कि बौद्धिक जिज्ञासा यदि उच्च से उच्चतर स्तर पर अविश्रांत भाव से आरोहण करती है और सत्य को स्पष्ट एवं स्पष्टतर रूप में देख पाती है तो इसका कारण पूर्व लेखकों द्वारा निर्मित चिंतन की सोपान परंपरा है। आलोचना में संवाद की स्थिति का खत्म हो जाना ही वह शून्य पैदा करता है जो अब दिनांक 19 फरवरी 2019 को नामवर सिंह के बाद हमारे सम्मुख आ खड़ा हुआ है। उनका जाना भारतीय ज्ञान परंपरा में एक युग का अवसान है। उनका व्यक्तित्व कृतित्व हमेशा उन्हें लोक स्मृतियों में जीवंत रखते।
0: अभी हम भीष्म मोहन झा से पूर्व प्रसारित वार्ता समालोचना की कसौटी पर डॉक्टर नामवर सिंह सुन रहे थे। शतदल में अब आइए सुनते हैं कहानी धर्म अभी जिंदा है। रचनाकार हैं ललन कुमार चौधरी।
2: उस रोज ना जाने कितने लोग आए और गए लेकिन अलख बाबू ने किसी की एक न सुनी। अलख बाबू इलाके के सबसे बड़े लोग, इतने बड़े कि गांव देहात में रहने वाली कामकाजी औरतें समझती कि इनकी बात को देश के बड़े नेता भी सुनते और मानते होंगे। आदमी के बड़े होने का क्या पैमाना है आजकल, कब बड़ा हो जाए और कब छोटा, कब ऊपर चढ़ जाए और कब नीचे गिर जाए, हर चीज के गिरने के अलग कायदे हैं लेकिन आदमी के अपने गिरने के अलग अलग कायदे निर्धारित कर रखे हैं। वे अकेले नहीं गिरते, वे एक साथ कई लोगों के साथ गिरते हैं। रमेश्वर जुल्हा का बेटा कलेक्टर बन गया, यह बात अलख बाबू को गांव के गुरुजी ने बताई जो रमेश्वर के बेटे को बचपन में पढ़ाया करता था। गुरुजी ने आगे यह भी कहा, अब तो अलख बाबू की शान गई, न शान रही न शौकत। गुरुजी ने 10 लोगों के बीच यह बात बोल डाली और यह कानों कान अलख बाबू के कान तक पहुंची। बात कोई बड़ी न थी अलख बाबू के लिए, लेकिन अलख बाबू की शान शौकत क्यों चली जाएगी भला, यह सवाल सबके जेहन में चल रहा था। पूरे इलाके में चर्चा कि रामेश्वर जुल्हा का बेटा कलेक्टर बन गया, वो भी आरक्षण के कोटे से नहीं अपने मेरिट के बल पर। अलबत्ता रामेश्वर के बेटे का नाम भी कमाल का ही था, स्कूल के मास्टर ने उसका नाम रखा था व्योम प्रहार, नाम भी बिल्कुल नया। वो गांव का मास्टर रामेश्वर को पैसे से भी मदद किया करता था और बाहर कलेक्टर बनने के लिए भेजने वाला शख्स भी वही था। कलेक्टर बनने से पहले ही मास्टर दिव्य जी अवकाश ग्रहण कर चुके थे। गांव में जब काफी उल्लास और जोश था, सभी युवक वर्गों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उस जिले के कलेक्टर को भी आमंत्रित किया गया। कलेक्टर साहब के बगल में दिव्य आलोक बैठे थे। पहले कलेक्टर साहब ने ही व्योम प्रहार को माला पहनाई और अपने वचन में कहा कि गांव नहीं जिले के इतिहास का पहला कलेक्टर है। इस पर तालियां केवल बजी नहीं वरन तालियों से कहीं ज्यादा गांव समाज के लोगों का चेहरा इस तरह शान से बदला कि सभी व्योम प्रहार के बदले मानो खुद कलेक्टर हो गए। मन से उतरते ही व्योम प्रहार सीधा रमेश्वर जुल्हा की झोपड़ी की तरफ नहीं गया, वह मुड़कर उस भीड़ में अलख बाबू को ढूंढने लगा। अलख बाबू तो थे ही, पर सबसे पीछे कुर्ते का कॉलर ऊपर किए खड़े थे। व्योम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबू आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मास्टर साहब के बाद अगर किसी ने बिना कहे मदद की तो आप ही थे। भीड़ सन और गुरुजी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अलख बाबू को याद आया, 6 साल पहले अंधेरी रात में रमेश्वर इनके दरवाजे पर आया था बेटे की कोचिंग की फीस के लिए। अलख बाबू ने बिना हिसाब पूछे 5,000 रुपये उसके हाथ पर रख दिए थे और कहा था, किसी से कहना मत, मेरी शान को शोर पसंद नहीं है। शान शौकत जाने का डर जिसको था, उसी शान ने चुपचाप एक व्योम को प्रहार करने लायक बना दिया था। गिरने के कायदे अलग होते हैं अलख बाबू, कभी कभी आदमी गिरकर ही सबसे ऊंचा उठ जाता है और अकेले नहीं पूरे गांव को साथ उठाता है। उसी शाम अलख बाबू ने गांव में ढोल पिटवा दिया। खुशी का मौका है, व्योम प्रहार कलेक्टर बन गया, गांव का नाम रोशन हुआ। 25 जुलाई को मेरे दरवाजे पर भोज है, कोई भूखा ना रहे। फिर बढ़ई को बुलाया और कहा, एक कुर्सी बनाओ, ऐसी वैसी नहीं जैसे राजा महाराजा की होती है, ऊंची चौड़ी नक्काशीदार। पर यह याद रखना, कुर्सी सत्ता की भूखी नहीं होती, वह होती है आदमी के विचारों की, चिंतन की, अच्छी सोच की, जिस पर बैठकर वह जन कल्याण कर सके, समाज और देश हित में बेहतर कार्य कर सके। अलख बाबू के यहाँ चहल पहल बढ़ गई, पूरा गांव मानो उमर पड़ा, सभी वर्गों में जाति में उल्लास था। चहूं और चर्चा, अलख बाबू को किसी ने पहचान ही न पाया आज तक। आज तो उन्हें अपने बेटे से भी ज्यादा बढ़कर खुशी हुई। 10-20 गांव के बड़े लोग भी उस भोज में आए। भोज की तैयारी 25 जुलाई को रखी गई। इसी दिन गांव के इतिहास का सबसे बड़ा दिन भी है। अलख बाबू इसी दिन गांव के सरपंच चुने गए थे निर्विरोध, और पूरा गांव एक स्वर में इन्हें चुना था। पर मन सस्ते सस्ते अलख बाबू की आंखें नम हो गई, सोचने लगे, लेकिन राजा तो राजा होता है और प्रजा तो प्रजा ही। प्रजा हर देश हर काल में भिखारी ही बनी रहती है, उसकी समस्या यूं की यूं पड़ी रहती। कितना भी कोई राजा बने, लेकिन प्रजा कहां कभी इतिहास की कोख में पल बढ़ सकी। देश कितना भी बड़ा हो, प्रजा कभी अरी नहीं होती। कितने भी अपार बहुमत से सरकार सत्ता पर काबिज हो जाए, लेकिन प्रजा हमेशा सड़कों पर ही अपनी समस्याओं के साथ रोती चिल्लाती दिखती है। और जब भोज की तैयारी पूरी हुई, गांव का हर रास्ता अलख बाबू की हवेली की तरफ मुड़ गया। ढोल नगाड़े बजे और एक ही नारा गूंजा, कलेक्टर साहब की जय, कलेक्टर साहब की जय। अलख बाबू ने व्योम का हाथ पकड़ा और बड़े मान से उस राज की कुर्सी पर बिठाया। गांव के बुजुर्ग जवान बच्चे सबने कतार में आकर माला पहनाई, फूलों से व्योम का चेहरा ढक गया। लेकिन असली दृश्य तो उसके बाद हुआ, सबका दिल छू गया। कलेक्टर व्योम अचानक कुर्सी से नीचे उतरा, भीड़ चुप। वो सीधा अपने पिता रामेश्वर चूल्हा के पास गया, मैले कुचेले कुर्ते में सबके पीछे सिर झुकाए खड़ा रामेश्वर हड़बड़ा गया। व्योम ने पिता का हाथ थामा और भीड़ को चीरते हुए मंच की ओर ले आया। रमेश्वर मना करता रहा, बेटा मैं यहां, ये तेरी जगह है। व्योम माना नहीं, उसने पिता को उस राज की कुर्सी पर बैठाया, फिर अपने गले से सारी मालाएं उतारी और पिता के गले में डाल दी। झुककर पैर छुए और कहा, कलेक्टर तो मैं आज बना हूं बाबूजी, पर राजा आप हमेशा से थे, जिसने फटे कपड़ों में रहकर मुझे कुर्सी दिलाई। तालियों की गूंज से मानो आकाश भर गया। आसपास बैठे पक्षी चौंक कर चहचहाने लगे। एक स्वर में सबने रमेश्वर को बधाई दी और कहा, बेटा हो तो ऐसा। रमेश्वर कुर्सी पर बैठा था, आंखों में आंसू थे, भीड़ की नजर में एक खुशियों के आंसू थे, पर रमेश्वर अंदर ही अंदर उस भीड़ की तरफ देख रहा था जहां औरतें थी, बच्चे थे, लेकिन आज उसकी घरवाली नहीं थी। कलेजे के टुकड़े को कलेक्टर बनते देखने से पहले ही वो काल के गाल में समा गई थी। इसी महल में एक दिन इसी कलेक्टर को लेकर वह जब पहुंचा, और बहुत छोटा था, इलाज के पैसे के लिए आई थी, दरबान ने दुत्कार दिया था, आज वही महल फूलों से सजा था इनके लिए। हर आंसू की अलग अलग किस्से होते हैं। रमेश्वर की आंखों में दर्द के साथ खुशी थी और खुशी के साथ एक टीस। काश वो देख पाती मंच के पीछे एक जोड़ी आंखों, ये सब देख रही थी। हाथ में कलम थी, वो था धर्म, रमेश्वर का छोटा बेटा, व्योम का भाई। 8 साल पहले गुस्से में अलख बाबू को शामंत कहकर गांव छोड़ गया था। आज दिल्ली से पत्रकार बनकर लौटा था हिसाब करने, पर जिस सामंत से लड़ने आया था वो सामंत आज उसके बाप को राजा बना रहा था। धर्म की कलम कांप गई, क्योंकि धर्म अभी जिंदा है और जिंदा आदमी का सबसे बड़ा धर्म है सच देखना। सच ये था कि शान शौकत शोर से नहीं बनती, शान तब बनती है जब एक चूल्हा राशि कुर्सी पर बैठे और एक सरपंच उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो। राजा कोई भी बन जाए पर प्रजा भिखारी न रहे, बस इतना हो जाए तो इतिहास की कूक सचमुच भर जाए।
0: श्रोताओं, मानव जीवन, संस्कृति और साहित्य में कहानी का महत्व अत्यधिक है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ज्ञान, नैतिक मूल्यों और जीवन के अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। अभी हम ललन कुमार चौधरी से कहानी धर्म अभी जिंदा है सुन रहे थे। अब आइए चलते हैं शतदल के आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम राम बहादुर चौधरी से गजल सुनेंगे।
3: मैं गजल कहूंगा, पहली गजल देखें।

चल चलना है मेरे साथ तो ईमान लेके चल।

चलना है मेरे साथ तो ईमान लेके चल।

अपनी हथेलियों पे दिलो जान लेके चल।

सके मुस्कान लेके चल, उम्मीद की गर हो सके मुस्कान लेके चल।

बस भीड़ के भी दरमिया पहचान लेके चल, बस भीड़ के भी दरमिया पहचान लेके चल। राहें बनेंगी खुद ब खुद, बस

खोया हुआ माटी का वह सम्मान लेके चल, खोया हुआ माटी का वह सम्मान लेके चल।

0: आसमां तू काम है सकल संवेदना के साथ ही विज्ञान लेके चल संवेदना के साथ ही विज्ञान लेके चल। और अब दूसरी गजल तत् में देखें, वक्त ने क्या सीख ली जादूगरी है, वक्त ने क्या सीख ली जादूगरी है, आँख के आगे हुई धोखाधड़ी है, आँख के आगे हुई धोखाधड़ी है, और झूठ सिर चढ़ नाचता चारों तरफ ही, झूठ सिर चढ़ नाचता चारों तरफ ही, देखती सच की रही गूंगा गिरी है, देखती सच की रही गूंगा गिरी है, और बेचते फिरते अदब बाजार में जो, बेचते फिरते अदब बाजार में जो, साधना करने लगी धंधा गिरी है, साधना करने लगी धंधा गिरी है, और मूल्य भी जब माल सा बिकने लगी तो, मूल्य भी जब माल सा बिकने लगा तो, देखकर खामोश अंधा गिरी है, देखकर अंधा गिरी है, और कुछ नजर आती नहीं है रोशनी में, कुछ नजर आती नहीं है रोशनी में, आँख की ऐसी हुई सुरमा गिरी है, आँख की ऐसी हुई सुरमा गिरी है, और खींचता आंचल समय का शोक मंजर, खींचता आंचल समय का शोक मंजर, खौफ की ऐसी चली दादागिरी है, खौफ की ऐसी हुई दादागिरी है, और रात को भी दिन बनाने में लगे हो, रात को भी दिन बनाने में लगे हो, पार हद के हो गई चमचागिरी है, पार हद के हो गई चमचागिरी है। और तीसरी गजल देखें, कहाँ जा रहे हम एक कैसा सफर है, कहाँ जा रहे हम एक कैसा सफर है, पता ही नहीं है कि जाना किधर है, पता ही नहीं है कि जाना किधर है, और अमन खोजने में लगे लोग लेकिन, अमन खोजने में लगे लोग लेकिन, मोहब्बत से सारा जहाँ बेखबर है, अमन खोजने में लगे लोग लेकिन, मोहब्बत से सारा जहाँ बेखबर है, अब फलक पर सितारे चमकते भले हैं, फलक पर सितारे चमकते भले हैं, धरा तो पसीने से ही तरबतर है, धरा तो पसीने से ही तरबतर है, बनाए कहाँ आसियाए परिंदे, बनाए कहाँ आसियाए परिंदे, कहाँ काट दे कोई सहमा सजर है, कहाँ काट दे कोई सहमा सजर है, और समझ से पड़े है सियासी पहेली, समझ से पड़े है सियासी पहेली, निशाना कहीं है कहीं पे नजर है, समझ से पड़े है सियासी पहेली, निशाना कहीं है कहीं पे नजर है। आखिर का से देखें, वतन के लिए जो जिए थे मरे थे, वतन के लिए जो जिए थे मरे थे, यहाँ आज उसकी किसे अब खबर है, यहाँ आज उसकी किसे अब खबर है। और चौथी गजल है कि जरा पूछ लेना जमाने से पहले, जरा पूछ लेना जमाने से पहले, किसी से कभी दिल लगाने से पहले, जरा पूछ लेना जमाने से पहले, किसी से कभी दिल लगाने से पहले, और अलग दास्तां है मोहब्बत की जिसमें, अलग दास्तां है मोहब्बत की जिसमें, है रोना बहुत मुस्कुराने से पहले, है रोना बहुत मुस्कुराने से पहले। और से देखें कि चले हो सफर में सदा याद रखना, चले हो सफर में सदा याद रखना कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले, कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले। और सदा याद रखना दिलों के ये रिश्ते, सदा याद रखना दिलों के ये रिश्ते, नहीं टूट जाए निभाने से पहले, नहीं टूट जाए निभाने से पहले। और से देखें कि विवश है खुदा भी खुदाई के आगे, विवश है खुदा भी खुदाई के आगे, बनाना उसे है मिटाने से पहले, बनाना उसे है मिटाने से पहले। और आखिर का से देखें कि मिटा है अंधेरा सदा रोशनी से, मिटा है अंधेरा सदा रोशनी से, जली है जो लौ जगमगाने से पहले, जली है जो लौ जगमगाने से पहले, जरा पूछ लेना जमाने से पहले, किसी से कभी दिल लगाने से पहले, किसी से कभी दिल लगाने से पहले। और अलग दास्ता है मोहब्बत की जिसमें, है रोना बहुत मुस्कुराने से पहले, है रोना बहुत मुस्कुराने से पहले।
1: श्रोताओं, गजल एक अत्यंत लोकप्रिय और भावपूर्ण काव्य विधा है जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब में हुई। अरबी से ये फारसी और फिर सूफी संतों व मुगल दरवाजों के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंची। ये प्रेम, विरह और जीवन दर्शन को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शतदल के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। अपने सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए सुने 12 साल विश्वास के, विकास के, जल कल्याण के कार्यक्रम की 11वीं कड़ी। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में आज आप सुनेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार और संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ की गई विशेष बातचीत।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र, तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहाँ देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
2: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
2: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
2: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
2: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
2: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
2: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
2: सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
2: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
2: हकीकत तो ये जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
2: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
2: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
2: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
2: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
3: अच्छा,
2: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
3: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
2: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
3: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
2: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
3: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
2: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
3: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
2: हमने अल नैनो के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
3: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टिकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
2: देखिए, सीधा तुष्टिकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
3: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या है?
2: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो काम करो काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
3: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
4: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
5: धन्यवाद।
4: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनर्जागरण हो रहा है,

0: तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने

0: की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और बोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो तो अंग्रेजों के जो उस समय

0: के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइस रॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉक यार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी

0: इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के की 11वीं कड़ी। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त महताब। कार्यक्रम में आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ मैं फिर से आपके साथ मौजूद हूं। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे इस फरमाइश के साथ, जिसे हमें भेजा है इंदिरा बिहार रायगढ़ से वशीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वलीउल्ला अकरम नूरजहां, राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। इसी गीत की फरमाइश की है जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म ऊंचे लोग से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, सलमा आगा और साथियों ने। आइए सुनते हैं गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसकी फरमाइश हमसे की है सल्लार पहलगाम कश्मीर से, पीरजादा मिराज उद्दीन और उनके साथियों ने। इसी गीत की फरमाइश की है हमसे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद फरमा।

किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत की फरमाइश की है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोणिका प्रोणामिका और उत्कर्ष नेताम ने। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म अम्रपाली का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में अब आइए अगला गीत सुनते हैं। इस गीत की फरमाइश हमसे की है धुरैया गंगदौरी बांका से सांदेव हरी, रामविलास, रविकांत, नीरज, अमन, मारुति, सावित्री देवी, कवित्री देवी, गुंजा देवी, तनुजा कुमारी, अन्नू कुमारी, आंचल और रोशनी ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है मुंदीचक भागलपुर बिहार से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन और डोलू ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है धुरैया कालिस्थान बांका बिहार से डॉक्टर सीपी निराला और निराला परिवार ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, तानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी,

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कश्मीर की कली का ये लोकप्रिय गीत। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमसे की है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है बस स्टैंड रामटोरिया जिला छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, हरिराम दशरथ, श्रीमती शीला, श्रीमती ममता देवी, भारती, आरती, काजल और करण ने। इसी की फरमाइश हमसे की है भीकनपुर भागलपुर बिहार से अमर, अशोक, अजय, करण, संगीता देवी और गीता देवी ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है लालूचक भागलपुर बिहार से विष्णु कुमार चौधरी ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है भागलपुर रानी तालाब सबौर से मुकेश, शत्रुघ्न मुन्नी, वंदना सिप्री और परिवार के सभी सदस्यों ने। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म जंजीर से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

आप सुन रहे थे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय जूलियट आर